हम हर दिन की सुबह यही नहीं बोलना चाहते हैं कि नाच मेरी जा हो के मगन तू, छोड़ दे सारे किंतु परंतु, क्या ही होगा उससे। 8 बजे के उस पार बिल्कुल स्वागत है आपका। 8 बजकर हो चुके हैं 5 मिनट। गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतरा यहाँ पर आपके साथ है। यस, दिस इज द मॉर्निंग शो। इट्स नॉट ट्यूजडे मॉर्निंग, इट्स स्टिल अ मंडे मॉर्निंग। इट्स जस्ट दैट आज रेणुका को जो है हमने थोड़ा सा आराम करने को दे दिया है कि आज सुबह उठने की जरूरत नहीं है। व्हाट बेटर देन दिस, जब संडे के बाद मंडे मॉर्निंग को अर्ली मॉर्निंग नहीं उठना हो। वेल, कमिंग बैक टू हमारी अगली खबर फॉर ऑल द मोटर स्पोर्ट फैंस ओवर देयर। भाई 9 साल के बाद, आफ्टर 9 लॉन्ग ईयर्स, फॉर्मूला 1 जो है ऑफिशियली इट इज रिटर्निंग टू मलेशिया। द आइकॉनिक सेपांग इंटरनेशनल सर्किट जो है होस्ट करेगा फॉर्मूला 1 का रेस फ्रॉम 2nd to 4th of October 2026, मार्किंग द स्पोर्ट्स रिटर्न टू द वेन्यू फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2017। इंटरेस्टिंग ट्विस्ट यहां पर यह है दैट दिस रेस विल एक्चुअली बी कॉल्ड द फॉर्मूला 1 गल्फ एयर बहरीन ग्रांड प्री इन मलेशिया। Why? Because the original Bahrain race jo hai had to be cancelled due to the ongoing conflict in the Middle East, and Malaysia jo hai unhone step in kiya to host the event while keeping Bahrain as the official title sponsor. Sepang jo hai has always been one of the Formula One ka most loved circuits. Fast straights, challenging corners, unpredictable tropical weather, and fans ke liye ye circuit hamesha se hi kafi kafi apparently favorite raha hai. Aur Singapore mein jo F1 fans hai unke liye to it's even more exciting. The Malaysia race jo hai kaha ja raha will take place just 1 week before the Singapore Grand Prix, making it possible for the hardcore fans jo hai enjoy 2 Formula One ke weekends back to back in the neighboring countries. But agar aap bhi F1 ke fan hai, maybe it's time to start planning that October ka road trip. A quick flight to KL, fast cars, roaring engines, and the return of that one of Formula One's most iconic venues. I think that's a story that's got racing fans smiling aaj ki subah to, definitely. Yes, including my friends who are crazy about this. Radio Masti 24/7 live, but I'm going crazy for the agla gana as well. Let's go for a musical break and I will be right back on the morning show. Good morning.

धड़कन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हम

बज चुके हैं स्टूडियो क्लॉक पे 8:30। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। दिस इज द मॉर्निंग शो। मैं हूं अंतरा, यहां पर आपके साथ। एंड यस, सिंगापुर मलेशिया बॉर्डर से लेकर आई हूं सीधा खबर। सो इफ यू हैव ट्रैवल्ड वाया द वुडलैंड्स कॉजवे या फिर टुअस का चेक पॉइंट, यू नो वन थिंग फॉर श्योर, क्यूज जो है दैट कैन टेस्ट योर पेशेंस। वेल, दैट कुड सून बिकम अ लॉट ईजियर। एंड हाउ? दैट्स वेयर आई कम इन एंड कीप यू अपडेटेड ऑन दैट। Singapore and Malaysia jo hai are working together to launch a new joint digital immigration clearance system by January 2027. Ye initiative jo hai aim kar raha hai to reduce the congestion and make border crossings much faster using QR codes, facial biometrics and digital screening technologies. Ye plan jo hai also includes additional automated clearance lanes and the closer coordination between both countries ke immigration systems. It's expected to benefit not only the tourists but also hundreds and thousands of daily commuters jo travel करते हैं बिटवीन जोहर एंड सिंगापुर फॉर वर्क, बिजनेस एंड स्कूल। इनफैक्ट सिंगापुर जो है हैज ऑलरेडी बीन एक्सपैंडिंग अपना पासपोर्ट लेस एंड क्यूआर कोड इमिग्रेशन का क्लियरेंस, वाइल मलेशिया जो है इज रोलिंग आउट इज माई NIISE डिजिटल इमिग्रेशन प्लेटफॉर्म, मेकिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रेवल स्मार्टर एंड मोर सीमलेस। वेल, थोड़ी देर पहले ही हम इसी बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे। इट्स स्लोली ऑल्सो चेंजिंग द वे वी ट्रैवल एंड इट्स जस्ट गोइंग ओनली एंड ओनली फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। आज बोर्डिंग पास फोन में है, इमिग्रेशन QR कोड से हो रहा है, कल शायद पासपोर्ट निकालने की जरूरत भी ना पड़े। Right? Of course, you'll still need to carry your physical passport over here as immigration officers jo hai may ask to see if it is required. But if everything goes according to the plan, crossing one of the world's busiest land border ka borders could soon become a much quicker experience. Well, that was that from yaha ke Singapore Malaysia ke news desk se. But there are more news waiting for you. Uske beech beech mein aane chahiye khoobsurat se musical break. That is what makes all our shows so very special. Good morning.

That's right. डूब जाना है सारी की सारी खबरों में. एंड दैट्स व्हाट इट इज ऑल अबाउट दिस मॉर्निंग. दिस इज द मॉर्निंग शो. गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर. आज मॉर्निंग शो पे रेणुका नहीं अंतरा आपको लेकर जा रही है थ्रू ऑल द न्यूज एंड वन विच इंडिया में एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट एंड ऑल्सो ऑल द इंडियंस आर टॉकिंग अबाउट इट. एक मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट ओवर द वीकेंड दैट इंडिया हैज अ न्यू यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर नाउ. सीनियर लीडर प्रहलाद जोशी जो है हैज ऑफिशियली टेकन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आफ्टर धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन. इट वॉज एक्सेप्टेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. इंटरेस्टिंगली मिस्टर जोशी जो है प्रहलाद जोशी विल कंटिन्यू हैंडलिंग द एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियोज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड the new and renewable energy along with education for now. ye jo hai ye hai 5-time member of parliament from Dharwad, Karnataka and has been a part of union cabinet since 2019. Over the years he has also handled ministries like coal mines and parliamentary affairs, making him one of this party's more experienced parliamentarians. ab timing bhi kafi significant hai. He takes over the education ministry at a time jab this sector is under intense public scrutiny following the recent exam paper ka leak controversy and the student protest jo kafi din chale. Naturally expectations jo hai kafi high hai, especially around bringing greater transparency, accountability and reforms to the examination ka system. Speaking after assuming office, Mr. Prahlad Joshi jo hai unhone kaha this is a new subject for me, and then he said that he's taking time to understand the ministry's function before moving ahead. Naye minister, naye zimmedari and students ki taraf kafi sari jo hai expectations. Coming weeks jo hai will also show us what direction ye sara ka sara education system jo hai takes under its new leadership. And yeah, we can only just wait and watch. Radio Masti 24/7 live per coming up is another beautiful musical break. This is the Monday morning show. It's called the morning show. Yes, and this is me, Antra, taking you through it on Radio Masti 24/7 live. Good morning.

9 बजे के उस पार हम लोग पहुंच चुके हैं. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती 24/7 लाइव परंतराप के साथ. यहां पर दिस इज द मॉर्निंग शो. यस, इट्स नॉट ट्यूसडे मॉर्निंग बिकॉज यूजुअली इट्स ट्यूसडे मॉर्निंग जब अंतरा यहां पर सुबह सुबह पहुंच जाती है, बट इट्स डेफिनेटली मंडे वाली सुबह है. एंड सिंस 7 AM आई हैव बीन देयर विद यू अपडेटिंग यू विद ऑल द न्यूज. और यहां पे योगेश जो है मुझसे पूछ रहे हैं, सही सही बताओ कि ये जो सुबह 7 बजे से ड्यूटी लगी है तुम्हारी सही लग रहा है भाई? कभी कभी दूसरे की हेल्प कर देनी चाहिए. और अगले बंदे का अगर ब्रेक जो है वेल डिजर्व्ड हो, तो फिर वो आपको खुशी खुशी ये सारी चीजें करनी चाहिए, क्योंकि एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के काम आता है. कल को अगर मैं छुट्टी पे गई तो फिर ऑब्वियसली आई एम श्योर दैट मेरे दोस्त भी यहाँ पर जो मेरे कलीग्स हैं वो मेरे को बैकअप जरूर देंगे, है ना? ये मैंने अभी आपको बता दिया, बाकी तो जो है जैसे. बट कमिंग बैक टू द मॉर्निंग शो, वेल अ स्टोरी दैट्स मेकिंग हर इंडियन को एब्सोल्युटली प्राउड. मीरा भाई चानू, yes, the Olympic silver medalist, has won her 3rd consecutive Commonwealth ka gold medal, clinching women's 48 kg weightlifting ka title at Glasgow 2026. Is victory ke saath she has also given India ka very first gold medal of these Commonwealth Games, and it was a record-breaking performance. Meerabai jo hai lifted 85 kg in the snatch setting at the new Commonwealth and Games record, followed by 105 kg in the clean and jerk for a total lift of 190 kg, another Games record. Now she finished this massive 22 kg ahead of the silver medalist, proving once again that why she's one of the greatest weightlifters India has ever produced. Now ye jo hai Meerabai Chanu ka 4th Commonwealth Games ka medal hai overall, after winning silver in Glasgow 2014, followed by gold in Gold Coast 2018 mein. Gold fir unhone Birmingham में जो है वो जीता था 2022 में, एंड नाउ गोल्ड इन ग्लासगो इन 2026. इनक्रेडिबल जर्नी. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया हैज ऑल्सो वन 2 सिल्वर मेडल्स इन वेट लिफ्टिंग. ऋषिकांता चनम्बम नाम है इनका, क्लेम्ड सिल्वर इन मेन 60 kg कैटेगरी, एंड राजा मुतिपंदी जो है ही एडेड अनदर इन मेन 65 kg का इवेंट. वेल, Indian weightlifting continues to shine हमारे Commonwealth के stage में, and I think it's a proud moment because I don't know whether you have seen that video or not. हमारे India का national anthem जब play हो रहा था during the medal ceremony, हमारी मीराबाई चानू, she got very very emotional. She couldn't hold back her tears. It's a moment that touched millions and millions of Indians watching around the world. So congratulations to मीराबाई चानू and the entire Indian contingent to say. एंड आई थिंक ये तो बस शुरुआत है. ग्लासगो से भी और भी मेडल्स की, बिल्कुल लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड वी विल कीप यू पोस्टेड एंड अपडेटेड ऑन द गो एनी टाइम एनी वेयर बिकॉज दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 लाइव. आई थिंक नेक्स्ट गाना जो है अमेजिंगली डिस्क्राइब्स वॉट ऑल दीज पैशनेट स्पोर्ट्स पीपल हैव. दिल में वो जो जिद होती है ना, आई थिंक दैट जस्ट डज इट ऑल.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के

धुरंधर के गाने आई डोंट थिंक सो दे आर गोना गो एनीवेयर इन द कमिंग टाइम्स. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर 9 बजकर हो चुके हैं 20 मिनट बाय द स्टूडियो क्लॉक. दिस इज द मॉर्निंग शो. मैं हूं अंतरा यहां पर आपके साथ. वेल भाई तरह तरह के स्कैम्स के बारे में जो है यहाँ पर अपडेट किया जाता है. एंड लेट मी टेल यू अबाउट दिस वन. सो अ वुमन इन सिंगापुर हैज रिपोर्टेडली लॉस्ट मोर देन $1 million आफ्टर फॉलोइंग विक्टिम टू दिस स्कैमर जिन्होंने प्रिटेंड किया टू बी अ पुलिस ऑफिसर ऑन व्हाट्सएप. बट हियर इज द शॉकिंग पार्ट. स्कैमर इवन यूज द प्रोफाइल पिक्चर ऑफ a member of parliament to make the account appear more trustworthy. So reports ke according ye scam jo hai ye March mein hua, and the victim was told that she had outstanding arrest warrants against her and was instructed not to tell anyone about the investigation. Over just 2 weeks the scammer jo hai unhone convince kar liya inko to make 32 bank transactions, and she even personally handed over her jewelry and valuables. By the time the truth came out, she had already lost $1 million. Now the scam was only discovered when the woman attended a meet the people session because her bank account has been frozen. After accompanying her to a police station, an MPK team helped confirm that she has been dealing with scammers itne time se. And scammers aajkal sirf fake phone calls pe, matlab I think it's like too passe for them right now. They are using official looking names, government logos, deep fakes, profile pictures, psychological pressure just to make their stories sound believable. Simple rule, by all the time we keep on telling you, no genuine कोई भी एमपी हो, पुलिस ऑफिसर हो, एनीवन विल नॉट आस्क यू टू ट्रांसफर मनी, सरेंडर आपका वैल्यूएबल्स, या फिर कीप एन इन्वेस्टिगेशन सीक्रेट आपकी फैमिली से. अगर इस तरह का कोई भी कॉल या मैसेज कभी भी आए, ऑलवेज वेरीफाई, पॉज, वेरीफाई, स्पीक टू समवन यू ट्रस्ट बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ एक्शन, मेकिंग एनी काइंड ऑफ ट्रांसफर्स. स्कैम्स कैन हैपन टू एनीवन. अवेयरनेस जो है, I think it's still our biggest defense, and we need to be aware all the time. Satark, जिसको कहते हैं ना हिंदी में, वो भी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इस टेक्नोलॉजी से बनी हुई आज की दुनिया में इफ वी आर नॉट अवेयर देन इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर इसी सुबह अल्लाह से थॉट के साथ बढ़ते हैं आगे, एंड आई विल बी राइट बैक. स्टे ट्यून्ड.

0: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है। तुमको लेकर ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
1: मुझे चांद पे ले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे। ट्यून इन टू।

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: भाई तारीफों का तो कुछ ऐसा है माय डियर फ्रेंड, कितनी भी कर लो कम ही लगती है। नहीं, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अगर आप मेरी तारीफ कर रहे हैं तो थोड़ी देर और करते रहिए, क्योंकि ट्रैफिक अपडेट का यहाँ पर हो चुका है वक्त। व्हीकल ब्रेकडाउन आपको इस वक्त मिलेगा ऑन KJE टुवर्ड्स BKE आफ्टर चुआशुखांग वे। रोड वर्क की जो है वो खबर है ऑन AYE टुवर्ड्स अटवास आफ्टर पेंजुरू रोड, अवॉइड करें लेन नंबर 1। और मिलेगा व्हीकल ब्रेकडाउन ऑन बुकेतमा रोड टुवर्ड्स वुडलैंड्स आफ्टर सरागुड रोड, अवॉइड करें लेन नंबर 2। वेल, दैट वाज द ट्रैफिक अपडेट इस घंटे का। कमिंग अप नेक्स्ट, आतिफ असलम की खूबसूरत सी आवाज में फ्रॉम द साउंडट्रैक ऑफ टाइगर्स इन द हिट्स, ब्यूटीफुल रोमांटिक ट्रैक। कमिंग अप नेक्स्ट, गुड मॉर्निंग, ये है द मॉर्निंग शो। आई विल बी राइट बैक।

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: और यूं ही चलते चलते वो वक्त आ गया कि सात से अब बजने वाले हैं दस. दैट्स राइट, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर. जी हाँ, मंडे मॉर्निंग की शुरुआत काफी एकदम परफेक्ट तरीके से ऑलरेडी यहाँ पर हो चुकी है. द मॉर्निंग शो पे आज आप थे मेरे यानी कि अंतरा के साथ, एंड वापस से अंतरा के साथ आपकी मुलाकात होगी आज शाम को मस्ती वॉइस आपकी चॉइस पर, जहां पर हम आपके रिक्वेस्ट गानों के लेते हैं. ये सुबह वाले शो का काफी इंटेलिजेंट, काफी यू नो न्यूज नुमा एक माहौल बना रहता है, बट शाम का जो है इट विल बी क्वाइट लाइट, क्योंकि वो वक्त ही कुछ ऐसा होता है कि सारे दिन के थकान के बाद जो है ना थोड़ा सा लगता है कि कोई आए, हल्की फुल्की थोड़ी बहुत बातें करे, कुछ अच्छे अच्छे गाने चलाए, तो मूड जो है ना वो बिल्कुल बहुत ही कमाल का हो जाए. सो वेल, द परफेक्ट किक स्टार्ट टू योर डे वाज ऑलरेडी हियर. अभी एक घंटे का ब्रेक, एंड ऑफकोर्स उसके बाद हमारी मुग्धा जो है वो आ जाएगी यहाँ पर लेकर मस्ती हैंग आउट, उनको सुनिएगा, एंड उसके बाद आपसे मुलाकात होगी आज शाम को 5 बजे. जी हाँ, तब तक के लिए हैव अ फैंटास्टिक एंड प्रोडक्टिव डे अहेड, एंड दिस इज बाय बाय बिकॉज अंतरा इज साइनिंग ऑफ ओनली फ्रॉम द मॉर्निंग शो, बट आई विल सी यू ऑन मस्ती बॉयज आपकी चॉइस शाम के टाइम. बाय बाय एंड टेक केयर.

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट.

0: With RJ Antara, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त. बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्र लाती है RJ अंतरा हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7.
1: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें.
2: आई लव यू रसना.
1: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन. Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Mercy 24/7 Live.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
1: Not all music is loud. Some songs just sneak in. What makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Musti Unplugged. Your indie acoustic playground on Radio Musti 24/7.
3: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
1: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे। फिर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय एवरीबॉडी, वाओ, अभी तो मैं अपने वेक अप सिड वाले मोड में थी। फ्राइडे, अभी तो हम फ्राइडे का शो कर रहे थे ना, लाइक मैं तो आपको कितनी अमेजिंग बातें बता रही थी। एंड गेस व्हाट, व्हेन डिड दिस फ्लिप हैपन, लाइक कब गया सैटरडे और संडे, मुझे पता क्यों नहीं चला। ओह माय गॉड, इट्स मंडे अगेन एंड मंडे से सरप्राइज, इट्स टाइम टू बी एन अडल्ट, राइट? बिल्कुल सही बात है, जस्ट अनदर मैजिक मंडे एम ही आ गया। बट कोई बात नहीं, तुम मंडे हो तो मैं भी एम फॉर मुग्धा हूँ, तिरकिट धा। सो दिस इज मी मुग्धा बैक अगेन ऑन अ मंडे मॉर्निंग। लोग मंडे से बहुत डरते हैं, बट कोई बात नहीं मंडे, एज आई सेड, तुम मंडे हो तो मैं मुग्धा हूँ। इतना मंत्र मुग्ध कर दूंगी कि लोग भूल जाएंगे आज मंडे है, वो सिर्फ याद रखेंगे ये मुग्धा का मस्ती हैंगआउट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो, आज का हफ्ता। इट्स मंडे अगेन, मैं हूँ मुग्धा आपके साथ। और एक बहुत अमेजिंग बात हुई पिछले हफ्ते, पता है, बहुत ही अमेजिंग, इतनी अमेजिंग कि आई वाज लाइक व्हाट। हाँ, तभी तो बताऊंगी, हु बिहेव लाइक माय एक्स एंड मेनी एक्सेस। लेकिन ये सारी बातें बस एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। दिस इज मी मुग्धा, वेलकम बैक एवरीबॉडी। जो लोग मुझे अभी यहाँ सुन रहे हैं, जो लोग मुझे वर्ल्ड वाइड सुन रहे हैं, ऐप पर सुन रहे हैं जो कि एकदम चिंटैक वाली है, आप सभी को मेरा नमस्कार। कहिए क्या सुनेंगे आप, क्योंकि मैं वो नहीं बजाऊंगी जो आप सुनना चाहेंगे, मैं तो वो बजाऊंगी जो मैं बजाना चाहूंगी, क्योंकि मेरी चॉइस इज परफेक्ट। ट्रस्ट माई चॉइस एंड ट्रस्ट मी विथ माई चॉइसेस। तभी तो मुझे पता लग गया कि क्या गड़बड़ और कहाँ गड़बड़ है, पर उस गड़बड़ के बारे में जो जिक्र होगा वो एक ब्रेक के बाद होगा। तो चलिए मंडे को वेलकम करते हैं, बिल्कुल भी इसको हम विलन निका मोड में नहीं डालेंगे। मंडे इज अ वेरी नाइस, बिकॉज मंडे को मुक्त आती है, तो मंडे को अच्छा होना ही पड़ेगा। शुरू करते हैं आज का शो मस्ती हैंगआउट का। वापस आई उसके बाद बताती हूँ कि हु बिहेव्ड लाइक ऑल ऑफ द एक्सेस, एक्स एक्स

0: अरे अरे अब बस दस से दिल कहाँ भरेगा।
1: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: रूठे रूठे पिया मनाओ कैसे, जी हाँ रूठे रूठे पिया बाप कहेंगे मुग्धा मंडे मॉर्निंग व्हाट इज रॉन्ग विद यू। Nothing is wrong with me. Something was wrong, क्योंकि कोई तो बिहेव कर रहा था रूठे रूठे पिया की तरह। एक्सेस याद है मैंने आपसे कहा था, एक्सेस लाइक दे घोस्ट यू समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम यू एक्चुअली। हाँ कोई तो रूठा रूठा पिया हो गया था ऑन सैटरडे। बहुत सारे लोगों के सिस्टम्स पे कोई तो बिल्कुल रूठे पिया की तरह जवाब ही नहीं दे रहा था। किसी ने तो अपना मुंह खोलने से मना कर दिया, किसी ने घूंघट ही नहीं उठाया। ये वाला पिया घूंघट भी पहनता है। Well, I'm talking about सबसे intelligent one जिसको हम कहते हैं ChatGPT OpenAI। हाँ उसका AI chatbot, people were unable to log in। हाँ उनका वो क्या कहते हैं लॉग इन ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा ना पिया ने घूंघट उठाने से मना कर दिया था। That was the घूंघट जो उठ ही नहीं रहा था। ज्यादातर chatbots जो हैं they were behaving like the exes, ghosting all the time। भैया हमारे लाइफ में एक एक्स बहुत है, वो ट्विटर वाला। तुम एक्स की तरह बिहेव ना करो। मतलब कॉमनली जो रिपोर्ट्स आई थी दे वर लाइक फेल लॉगिन्स और ऑथेंटिकेशन एरर्स आ रहे हैं, चैट हिस्ट्री लोड ही नहीं हो रही है, कोई जवाब ही नहीं आ रहा उधर से, या फिर सर्विस अनअवेलेबल, ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। अब बार बार लिख रहे हो उसके बाद भी आई सेड गेट लॉस्ट माय एक्स एंड बकेंगे। तुम चैटबॉट पे क्या करेगी? क्या है ना कि मैं जब स्टूडियो में अकेले बैठी रहती हूँ तो मुझे लगता है मैं किससे बातें करूँ, किससे बातें करूँ, आपसे बात करने के बाद ऑफकोर्स, तो मैं ऐसे चैटबॉट ओपन करके उससे हाय हेलो करती हूँ, वो मेरी बातों का जवाब देता रहता है। बट दैट डे आई रियलाइज ओ माई गॉड, पक्का उस तरफ ना कोई तो एक्स है जो जवाब दे रहा है, जिसका मूड खराब है और वो गोस्ट करने के मूड में है। ऑल द चैटबॉट्स वर बिहेविंग लाइक द एक्सेस। हाँ इट वॉज अ मैसिव आउटरेज। बहुत सारे लोगों का बहुत सारा काम रुक गया, कोडेक्स वगैरह पे जो काम करते बहुत दिक्कत हुई उनको, दे वर स्विचिंग बिटवीन द अकाउंट्स एंड एवरीथिंग। लेकिन ये आउटरेज काफी लंबा चला था। एक्स रूट गया भाई साहब, एक्स रूट गया। वैसे आप में से कितनों के एक्सेस बिल्कुल इस चैटबॉट की तरह बिहेव करते हैं, या कितने लोगों ने ऐसा महसूस किया कि भाई साहब ये तो मेरा एक्स है। आई नो एवरीबॉडी कैन रिलेट, है ना, घोस्ट करने वाले एक्सेस। हाँ ठीक हुआ था, पता नहीं कब हुआ था, काफी देर बाद हुआ था। देखो भैया मैं ऐसे घोस्ट करने वाले एक्सेस को 5 मिनट से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाय हेलो किया, जवाब नहीं आया, गेट लॉस्ट, तुम भी लॉस्ट हो जाओ अपनी चैट हिस्ट्री की तरह। बिल्कुल। आप में से कितने लोगों ने इस रूठे रूठे पिया को महसूस किया? कितने लोग लॉगिन करने की कोशिश कर रहे थे ऑन सैटरडे? हाँ दिस हैपेंड ऑन सैटरडे एक्चुअली। तभी तो मुझे पता लगा, तभी तो मुझे मालूम पड़ा। हाँ मैं घर पे थी ना सैटरडे को, ऑफ कोर्स तभी तो मुझे मालूम पड़ा जी। तभी तो मैंने कहा अब इस रूठे पिया को कोई नहीं मना रहा, अभी तो ठीक ही होगा। आई डोंट नो, अभी तो मैं आपसे बातें कर रही हूँ, बताना मुझे। फिलहाल ये एक्स कैसा बिहेव कर रहा है? आप सुन रहे मुग्धा को, आई बी राइट बैक, स्टे कनेक्टेड।

इनकी शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: वाओ वाओ वाओ वाओ क्या बात है। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं मुग्धा को, दिस इज मस्ती हैंगआउट एंड व्हाट एन इंटरेस्टिंग पीस ऑफ न्यूज। आपको पता है अभी ब्रेक से पहले, दिस म्यूजिकल ब्रेक से पहले मैं आपसे बात कर रही थी कि समटाइम्स जब मैं अकेली होती हूँ तो सोचती हूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, एंड आई ओपन दिस AI चैटबॉट एंड आई स्टार्ट टॉकिंग टू दिस AI चैटबॉट। मुझे पता है, मुझे मेरी इस बात के बाद मुझे बहुत से लोगों ने जज किया होगा कि ओ माई गॉड मुग्धा यू डू दैट, हैंग ऑन बिफोर यू जज एनी वन। इसीलिए मैं किसी से अपनी बात नहीं कहती। आपको पता है सिंगापुर में एक सर्वे हुआ और इस सर्वे में क्या पूछा गया, इस सर्वे में पूछा गया कि वुड यू ओपन अ चैट GPT और टॉक टू अ स्ट्रेंजर अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो। सिंगापुरियन का व्यूज आप जानना चाहेंगे? यू नो क्या होता है कि आजकल ना हमारी लाइफस्टाइल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत इंक्रीजिंगली बहुत ही कॉमन पार्ट बनता जा रहा है हमारी एवरीडे लाइफ, है ना। ज्यादातर लोग जो है वो चैट GPT का रुख कर लेते हैं सिर्फ किसी इंफॉर्मेशन के लिए नहीं, बल्कि कोई एडवाइस लेनी हो, रीअश्योरेंस चाहिए हो या अपने थॉट्स को प्रोसेस करने के लिए। बहुत से लोग मुझसे अग्री नहीं भी करेंगे, लेकिन अगर मैं सिंगापुर की बात करूँ बहुत सारे लोगों का जवाब है आई वुड डेफिनेटली गो टूवर्ड्स चैट GPT। वाई? लोग ये कह रहे हैं कि मैं AI से बात करना ज्यादा पसंद करूंगा बिकॉज क्लियरली सबसे पहली बात तो कि AI won't जज मी एज अ पर्सन। एंड एक जो पॉइंट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो ये था कि एक कमेंट जो था उसमें लिखा था कि AI इज बेटर क्योंकि वो इमिडिएटली आप उसे बात करना बंद कर सकते हो एंड आपका कोई कनेक्शन नहीं बॉन्ड होगा दोनों के बीच में, कोई कनेक्शन क्रिएट नहीं होगा क्योंकि आप जैसे किसी ह्यूमन बींग से बात करना शुरू करते हो आप ना चाहते हुए भी कनेक्शन बना लेते हो और फिर उस कनेक्शन को ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप किसी प्रॉब्लम के लिए तो किसी स्ट्रेंजर से बात करना शुरू कर रहे हो लेकिन देन द प्रॉब्लम अगेन अपीयर्स, अब बात बंद कैसे करनी है AI से, तो हम बात बंद। इसीलिए AI नाराज है, तभी एक्स की तरह बिहेव कर रहा है। वाई? आपको क्या लगता है AI के फीलिंग्स नहीं है? लो भैया फीलिंग दिखा दी सैटरडे को, उसने बंद कर दिया, किसी का भी जवाब नहीं दे रहा था, वो लॉग इन तक करने में मुश्किल आ रही थी लोगों को। लेकिन मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये सारे जो ये चिप्स है ना इनके पीछे जो भी बैठे हैं, मुझे पता है कोई ना कोई तो बैठा ही है, प्लीज इनमें एक्सेस को ना रखें। इनका कब मूड स्विंग हो जाएगा, कोई भी एक्स चाहे मेल चाहे फीमेल, इनके कब मूड स्विंग्स होने शुरू हो जाएंगे, कब ये जवाब देना बंद कर देंगे, कब ये उठ के चले जाएंगे और कब कहेंगे मुझे क्या पता। तो भैया हम फिर कहाँ जाएंगे, है ना। अब आप कहोगे तुम्हें तो पता होना चाहिए ना कि मैं क्या सोच रहा हूँ। अरे मैं तुम्हारे पास आई हूँ भाई, मुझे कैसे पता होगा तुम क्या सोच रहे हो। डोंट बिहेव लाइक अ रियल एक्स। बट देन सिंगापुर में भी ज्यादा लोग यही मानते हैं कि एक AI से बात करना इज फार बेटर देन टू टॉक टू अ स्ट्रेंजर। आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है, मैं आपसे डायरेक्टली सवाल पूछ रही हूँ कि आप किसी प्रॉब्लम में हो तो आप क्या करोगे, आप AI चैटबॉट की तरफ जाओगे सवाल पूछने या फिर आप किसी, चलो एकदम अनजान से नहीं पर किसी किसी से थोड़े बहुत जान पहचान वाले के पास भी रुक करोगे अपनी प्रॉब्लम

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको ला कर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।

फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: Hi everybody, welcome back. This is me, Mugdha, आप मुझे सुन रहे हैं मंडे को on मस्ती हैंगआउट। So have you ever noticed कि हम सब अपनी लाइफ में ना एक स्टेज पे आके ऐसे सोचते हैं कि यार कभी ना अपनी खुद की जगह होगी, एक छोटा सा रूम हो, चलो वो भी चलेगा ठीक है, लेकिन जहाँ पे कम से कम कबर्ड अपना खुद का हो, कॉफी मग अपना हो और रिमोट भी आपको किसी और से मांगना नहीं पड़े। तो जी मुग्धा आपके लिए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकर के आई है। इस वक्त ना ऑफिस पहुंचने की आप रेस में है, कॉफी आप साथ में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, वॉट एवर यू आर डूइंग। मैं आपको बताती हूँ कि एक इनिशिएटिव सामने आया है सिंगापुर में, 21 से लेके 35 साल के जो यंगस्टर्स हैं ना उनके लिए एक इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम शुरू हो रहा है, जहाँ पे सिलेक्टेड को लिविंग रूम्स जो है वो 30% तक डिस्काउंट पर अवेलेबल होंगे। मतलब इंडिपेंडेंस का जो पहला स्टेप है शायद अब आपके लिए और थोड़ा सा आसान होने वाला है। एंड ऑनेस्टली अपनी स्पेस का जो है ना वो सिर्फ एक एड्रेस नहीं होती, एक्चुअली वो कॉन्फिडेंस का एक दूसरा नाम होता है, और ये वही समझ सकता है जो कि इंडिपेंडेंटली रहता है और उसको ये फीलिंग पता है। तो आइए, मंडे को इतनी पॉजिटिव न्यूज मिल रही है ये जानने के बाद कि हमारे एक्सेस बहुत रूठे

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय, शो के दूसरे आर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज मी मुग्धा आतिथ्य के धा। मंडे मंडे वैसे भी पेशेंस का दिन होता है और पेशेंस फिलहाल बॉलीवुड टेस्ट कर रहा है अपने फैंस की। तो बॉलीवुड फैंस का अगर पेशेंस लेवल आपको टेस्ट करना है ना, तो बस एक लाइन बोल दो, ट्रेलर आज नहीं आ रहा है। देखो एग्जैक्टली वही हुआ इस बार। रणबीर कपूर की रामायणा जो है ना, आज तो नहीं, इनफैक्ट ये ट्रेलर जो है एक्चुअली रिलीज होना था 24th of July को। फैंस पूरे एक्साइटमेंट के साथ बैठे हुए थे, ट्रेलर का वेट कर रहे थे, और हुआ क्या, लास्ट मोमेंट पर मेकर्स ने उसकी ग्लोबल रिलीज जो है पोस्टपोन कर दी। यस, डिसअपॉइंटमेंट का दूसरा नाम रामायणा का ट्रेलर रिलीज। पर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी कर दिया प्रोड्यूसर जो है नमित मल्होत्रा, उन्होंने कंफर्म किया है कि रामायणा अब सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के साथ वर्ल्ड वाइड रिलीज होगा। तो मेकर्स आर सेइंग कि वो इस फिल्म को ना सिर्फ इंडिया में नहीं ऐसे रिलीज करना चाहते, पूरी दुनिया तक लेकर जाना चाहते हैं, ऑन अ वेरी ग्रैंड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस वाले लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। एंड इज द रीजन कि ये ट्रेलर ना ऐसे जो नहीं है लॉन्च हो रहा है, इसको फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। वैसे कभी कभी ट्रेलर लेट आता है, लेकिन अगर एंट्री ग्लोबल होने वाली है तो फैंस भी यही बोल रहे हैं कि भाई ठीक है, थोड़ा और वेट कर लेते हैं, जहां इतना इंतजार किया थोड़ा और सही। वैसे भी बचपन से ये सिखाया, सब्र का फल मीठा होता है।
2: दिल ना जाने
3: ना जाने
2: दिल ना जाने
1: मंडे को सब्र।

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल व्हाट्सएप टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आपको पता है हॉलीवुड की एक बात ना मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, वहाँ पे एक्टर्स ना सिर्फ नए कैरेक्टर्स नहीं करते हैं, पुरानी कहानियों को नए अंदाज में वापस से रीलिव करते हैं, जिंदा कर देते हैं। हाँ, बॉलीवुड में भी होता है, आप कहेंगे बॉलीवुड में तो होता है, बट जो मैं कहने जा रही हूँ सुनना उसको ध्यान से। इस बार पता है कौन आ रहा है वापस? जॉनी डेप, राइट। हमारे जैक स्पैरो, एडवर्ड, विली वोंका, मैड हैटर, ओ माय गॉड, कितने कमाल कमाल के कैरेक्टर्स उन्होंने प्ले किए हैं। जॉनी डेप जो है वापस आ रहे हैं एक बार एक बहुत ही आइकॉनिक रोल में, और वो है एबेंजर स्क्रूज, एक्चुअली अंकल स्क्रूज का। चार्ल्स डिकेंस की एक बहुत ही लेजेंडरी स्टोरी है अ क्रिसमस कैरल, उसका एक बहुत ही डार्क और फ्रेश अडेप्टेशन है ये है फिल्म में। फिल्म का नाम है एबेंजर, और इसका पहला लुक जो है और जो ट्रेलर वो देखकर ना फैंस बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि जॉनी जब किसी कैरेक्टर में आते हैं तो वो कैरेक्टर बन जाते हैं, ना कि जॉनी डेप रह जाते हैं, ही बिकम्स द कैरेक्टर हिमसेल्फ। फैंस एंड मी इंक्लूडिंग, बिकॉज मैं भी उनकी फैन लिस्ट में शामिल हूँ, आई एम एब्सोल्युटली सुपर एक्साइटेड। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वर्जन ना ट्रेडिशनल क्रिसमस स्टोरी से थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा मिस्टीरियस है, थोड़ा साइकोलॉजिकल फील लेकर के आ रहा है। और हाँ, जॉनी डेप की जो मेन स्ट्रीम हॉलीवुड रिटर्न है ना, ये उसको बहुत स्पेशल बना रहा है। वैसे कुछ एक्टर्स ना सिर्फ फिल्म्स में काम नहीं करते हैं, वो हर नई फिल्म के साथ एक नया कैरेक्टर क्रिएट नहीं करते बल्कि एक याद क्रिएट कर देते हैं, एंड जॉनी डेप

0: इज वन ऑफ देम. अब देखना है कि जॉनी डेप का जो नया अवतार है उनकी यादों की लिस्ट में कितने लंबे समय के लिए छप जाता है. Stay tuned.
1: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore.
2: Check it out.

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है। यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Musti Madness on Radio Musti 24/7.
2: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: कमिंग बैक टू बॉलीवुड, सबका प्यारा बॉलीवुड। एक चीज बॉलीवुड में फिल्म की शूटिंग से भी ज्यादा फास्ट चलती है, कास्टिंग रूमर्स। सच में एक नाम बाहर निकलता नहीं, दूसरा नाम ट्रेंड शुरू हो जाता है। मतलब लोग तो उसे शूटिंग भी शुरू करवा देते हैं, वो बंदा अपने घर पे चिल मार रहा होता है बैठ के। फिलहाल ये जो है वो नाम आ रहा है, डिस्कशन जो हो रहा है, प्रभास की मच अवेटेड जो फिल्म आ रही है स्पिरिट, उसको लेकर के। सो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, दीपिका पादुकोण जो है वो प्रोजेक्ट से हट चुकी हैं, निकल चुकी हैं, और अब ये सुनने में आ रहा है कि कटरीना कैफ इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने वाली है। तो कहा यह जा रहा है कि उन्हें फिल्म एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो ऑफर किया गया है। अगर ये कास्टिंग फाइनल हो जाती है तो कटरीना लगभग 20 साल बाद तेलुगु सिनेमा में वापसी करती हुई नजर आने वाली है। एंड मेकर्स जो है फिलहाल देखा जाए तो मेकर्स या कटरीना दोनों की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई नहीं है, ना तो कोई कंफर्मेशन आई है। वैसे बॉलीवुड फैंस ना बड़े कमाल के होते हैं, फिल्म का ट्रेलर आए या ना आए, कास्टिंग जो है ना, कास्टिंग की कहानी वो पहले ब्लॉकबस्टर बना देते हैं। ये नहीं वो, वो नहीं वो, वो नहीं वो, पिक्चर दिमाग में बनने लग जाती है और हम जिनके जिनके नाम सोच रहे होते हैं वो दूर दूर तक वेकेशन पे हो रहे होते घूम रहे होते हैं और वो खुद पढ़ रहे होते हैं, अच्छा मुझे कास्ट कर दिया, मुझे तो पता ही नहीं था, साइनिंग अमाउंट तो मुझे दिया ही नहीं। कटरीना भी फिलहाल अपने चिल मोड में सोच रहे होंगे, पर यू नेवर नो। कटरीना के बारे में कई बार मुझे लगता है कि इनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता, इस हाथ को नहीं पता होगा कटरीना इस हाथ से क्या करने वाली है, झापड़ मारने वाली है कि साइन करने वाली है। शादी भी तो ऐसी करी थी इन्होंने विक्की कौशल से।

0: नाचने का मन है।
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: उफ माय गॉड, बॉलीवुड में इस समय इतना ड्रामा चल रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब बॉलीवुड वाले बॉलीवुड में ड्रामे की जगह सब जगह अपना काम कर रहे हैं, पर फिलहाल एक जगह ऐसा ड्रामा है जो मुझे लगता है कि आपको बता ही देना चाहिए। प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए ये न्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नो, एक और कोर्ट रूम ड्रामा। बॉलीवुड का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है, जितना प्यारा फिल्म का नाम होता है ना, कभी कभी उसकी कहानी उतनी डेंजरस होती है, जान निकालने वाली। लाइक दिस वन, अब सोचिए नाम है पूजा मेरी जान। सुनते लगा हाय कोई आके किसी को गले लगा लेगा। हालांकि बॉलीवुड में इस वक्त कोई किसी को गले नहीं लगा रहा है, बट देन ट्रेलर देखिए आप इसका, पूरा मूड आपका एकदम कॉइन फ्लिप बदल जाएगा। हुमा कुरैशी और मृणाल ठाकुर जो हैं, वो हैं इसमें पूजा मेरी जान। उसका टीजर फाइनली रिलीज हो गया है लगभग 4 साल के इंतजार के बाद। तो ट्रेलर एक ऐसे ऑब्सेसिव प्यार की कहानी दिखाता है जो कि धीरे धीरे कोर्ट रूम ड्रामा और साइकोलॉजिकल थ्रिलर में तब्दील हो जाती है। हुमा इज प्लेइंग अ लॉयर, वो नजर आ रही है लॉयर के रोल में, जहाँ पे और जबकि मृणाल जो है वो कैरेक्टर जो है उनका, वो ग्रीफ और इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रही है। फिल्म को डायरेक्ट किया है नवजोत गुलाटी ने, और ये सब कुछ जो है वो बहुत जल्द रिलीज होएगा, आई एम प्रीटी श्योर, एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। वैसे बॉलीवुड ने हमें एक बात तो सिखाई है कि आई लव यू और आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, दोनों सुनने में शायद जरूर एक जैसे लगते हैं, लेकिन कहानी बिल्कुल अलग होती है। हालांकि बॉलीवुड में तो अभी कुछ और ही कहानियां चल रही हैं, पर फिलहाल हम रुक कर लेते हैं अगले गाने की तरफ, बिकॉज हमारा तो मेन मुद्दा इधर ही है।

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके, ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: कभी कभी हम लाइफ की सबसे सिंपल चीजों को इतना नॉर्मल बना देते हैं ना कि हम भूल जाते हैं उनमें कितनी वार्मथ छिपी है उनमें। जैसे कि बहुत ही सिंपल टास्क है, मोजे पहनना, सॉक्स, SOCKS, सॉक्स। सुनने में लगता है यार क्या है, मतलब अब इसके बारे में बात करेंगे? यस, इसके बारे में ही बात करेंगे। इंटरनेट पर एक बहुत ही प्यारा छोटा सा वीडियो वायरल हो रहा है, जो चीज लोगों के लिए नॉर्मल है वो कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। एंड दिस कैन बी अ वेरी ब्यूटीफुल रिमाइंडर। एक छोटा सा बच्चा है एंड दिस बॉय इज सफरिंग एंड लिविंग विद डाउन सिंड्रोम। और पता उसने क्या किया, उसकी थेरेपिस्ट जो है उसने उसको सॉक्स पहनाए, और जैसे ही उसने सॉक्स पहनाने का काम किया, बिना किसी हेजिटेशन के उस बच्चे ने अपनी थेरेपिस्ट के गाल पे बहुत ही प्यारी सी मां पप्पी दे दी। राइट, ओ माई गॉड, मैं वो वीडियो देख रही थी और मैं रो रही थी, आई वॉज लिटरली क्राइंग। मुझे पता भी नहीं चला कि कब मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे, बिकॉज आई नेवर इमेजिन्ड इतना फ्लॉलेस और विदाउट एनी एफर्ट आप किसी को थैंक यू बोल सकते हो विदाउट अ सिंगल हेजिटेशन। हमारे अगर बच्चा सॉक्स ना पहने नॉर्मली तो माँ बाप उसको डांट देते, लाइक व्हाट द हेल इज दिस, यू डोंट इवन नो हाउ टू वेयर योर सॉक्स। एंड दैट लिटिल किड, उसकी थेरेपिस्ट ने उसको मोजे पहनाए और उसने इतने चुपचाप से उसको गाल पे पप्पी दे दी और इतनी चुपचाप से मेरी आंखों से आंसू गिरने लग गए। ओह माय गॉड, कोई ग्रैंड मोमेंट नहीं था, कोई ग्रैंड अचीवमेंट नहीं था, एक छोटा सा काम था और उसके बाद एक बहुत बड़ा इमोशन और उससे भी बड़ा लेसन। किसी ने कुछ स्पेशल नहीं किया, बस जिसने देखा उसने फील किया, और जो ये फीलिंग है ना, यही सबसे बड़ा एक्सप्रेशन है।

0: हम ना कभी कभी बड़े बड़े मोमेंट्स का वेट करते रह जाते हैं और ये जरा जरा से ग्रेटिट्यूड्स दे जस्ट स्लिप अवे.
1: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है। यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Masti Madness on Radio Masti 24/7.
2: Download Radio Masti 24/7 app to call us instantly or email

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: टेक्नोलॉजी पे हम इतना ट्रस्ट करते हैं ना कि बस एक स्विच ऑफ हो जाता है और लगता है ओ माय गॉड शो खत्म, वाईफाई बंद, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फोन की बैटरी लो, फ्रस्ट्रेशन लेवल एकदम टॉप पे हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले ओपन एआई चैट जीपीटी बंद हो गया था, लोग पागल हो गए थे, पूरी दुनिया हिल गई थी, पीआर रूट गए थे, कैसे मनाए बताओ जरा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के एक सिनेमा में एग्जैक्टली उल्टा हुआ, यू नो टेक्नोलॉजी फेल हो गया। वहां पे क्रिस्टोफर नॉलन की द ओडिसी की स्क्रीनिंग वहां पे चल रही थी और तभी अचानक पता है क्या हुआ, वहां भी लाइट जाती है जी, पावर आउटेज हो गया, पावर चली गई, वहां पे स्क्रीन ब्लैक, प्रोजेक्टर बंद। ऑडियंस सोच रही थी अब क्या, पिक्चर खत्म। लेकिन तभी थिएटर में बैठे हुए एक हिस्ट्री के टीचर ने खड़े होकर के कुछ ऐसा किया जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने होमर की द ओडिसी को अपने अंदाज में सुनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरा हॉल जो है उनकी स्टोरी टेलिंग में इतना खो गया कि बाद में उस मोमेंट का वीडियो वायरल हुआ और लोगों ने लिखा दिस इज हाउ द ओडिसी वॉज ओरिजिनली मेंट टू बी एक्सपीरियंस्ड। वाकई में उस दिन प्रोजेक्टर नहीं चल रहा था लेकिन एक टीचर ने पूरा थिएटर चला दिया। वाओ नॉलन जी, देखना देखना इसको, आपने बहुत मेहनत की है, नो डाउट, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन सम थिंग्स आर मेंट टू बी टॉट द वे दे शुड बी। वाओ

स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: कभी कभी हम लाइफ के कुछ डिसीजन इतना रिसर्च करके लेते हैं कि लगता है वाकई में लाइक एक एप्पल भी खरीदना हो तो चार जगह जाकर के देखेंगे, फ्रूट वेजिटेबल्स कपड़े इन सब चीजों में। पर कई बार कुछ चीजों के लिए हम बिल्कुल नहीं सोचते। फोन लेना हो तो 75 जगह जाएंगे, मूवी देखनी हो तो 10 रिव्यूज देखेंगे, बट देन व्हाट अबाउट योर करियर? एक डिसीजन ऐसा जो गूगल से नहीं चलेगा, खुद को एक चांस देने से ही कुछ हो सकता है। अगर आप कभी सोचते हैं कि मीडिया और रेडियो प्रेजेंटेशन, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, कहीं पर खड़े होकर पोडियम पर बोलना, ये सब दुनिया को एक्सप्लोर करना, इन सब चीजों के बारे में सोचा है कभी, तो यस, शायद अब सिर्फ सोचने का नहीं ट्राई करने का वक्त है। द आरजे एकेडमी बाय मस्ती मीडिया नेटवर्क जो है वो एडमिशन्स ओपन कर चुका है। हाइब्रिड ट्रेनिंग मॉडल है, सिर्फ 12 घंटे आवर्स जो है आपको देने होंगे पर लेवल के हिसाब से, बिगिनर्स एडवांस सब कुछ है यहाँ पे। फ्लेक्सिबल इंडिविजुअल फोकस सिलेबस है, उम्र आपके 14 साल या उससे ज्यादा की होनी चाहिए। एंड जो सिलेक्टेड ट्रेनिंग होंगे ना जो जीतेंगे या जो पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे, उनमें भी सिलेक्टेड वंस जो होंगे रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर उनको शो होस्ट करने का मौका मिलेगा। तो कभी कभी करियर चेंज नहीं होता है, बस एक एप्लीकेशन भेजते हैं और आपके करियर को दिशा मिल जाती है। यस, एप्लीकेशन भेजनी होगी info@radiomasti.com.sg पर। आपको एक अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिख करके भेजना है, उसी से हम अंदाजा लगा लेंगे कि आपको किस तरफ आपके करियर का रुख हम मोड़ने वाले हैं। जल्दी से ये वाला काम करिए, देखते हैं ये डिसीजन आपको कहां तक लेकर जाता है। सुन रहे हैं आप मुग्धा को, स्टे कनेक्टेड।

0: दस का बीस।
1: अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके, ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
4: और बस इसी के साथ आज का मस्ती हैंग आउट यहीं पे रैप अप करते हैं। इट वॉज एक्चुअली अ वेरी मैजिकल मंडे, मुझे तो बहुत मजा आया। आज हम हंसे, बॉलीवुड की बातें करी, सिंगापुर की इंटरेस्टिंग खबरों के साथ हमने कहानियों को स्टोरीज को आगे बढ़ाया, शो को आगे बढ़ाया, और कुछ ऐसी बातें जो शायद मेरे और आपके साथ घर तक जरूर जाएंगी। फिलहाल वक्त है आपसे इजाजत लेने का। दिस इज मी मुग्धा, दिस साइड ऑफ द स्टूडियो, माइक के इस तरफ। आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपनी इस अनमोल घड़ी के कुछ घंटे मेरे नाम किए। यस, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, याद रखिए लाइफ को सीरियसली लेना बहुत जरूरी है, लेकिन खुद को इतना भी सीरियसली मत ले लो कि हंसी कहीं पीछे रह जाए। मैं आपसे फिर मिलूंगी अगले शो में, दैट विल बी ऑन लाइक वेंसडे। जी हाँ बिल्कुल, बुधवार को मिड ऑफ द वीक हम मिलने वाले हैं, बहुत सारी अमेजिंग बातें करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, और मस्ती को ना म्यूट मत होने देना, वाइब्रेंट मोड पे रखना। ओके, बाय बाय।

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे
2: कैफे कैफे। जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें,
3: आई लव यू रसना,
2: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। योर डोज ऑफ 90s नॉस्टैल्जिया, मस्ती 90s मिक्सटेप विद आपकी 90s वाली अंतरा, थर्सडेज 11 AM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
4: Monday blues? Not on our watch. Wake up to world news, fresh updates, aur thoda Bollywood ka maza bhi. Make your Mondays matter with the morning show with Renuka, 7 a.m. onwards.
5: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.

0: हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musti 24/7. Email a brief intro to info@radiomusti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behen aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार बॉटल में खरीद रहे हैं।
4: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
5: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. जोश में रहो।
0: न करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है, मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें। Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है? ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
3: मुझे चांद पे ले चलो।
2: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
3: रात अकेले ही। जोश में रहो।
4: Take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
5: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.

0: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: और कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे?
2: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी. क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो. दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7.
3: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप.
4: As the sun rises, so does hope. Begin your day with devotion, harmony and positivity with the Devotional Hour on Radio Masti 24/7. Masti pe bhakti, subah 6 baje se.
5: Mere Karan Arjun aayenge.
6: Na Karan Arjun aayenge, na hi RJs aayenge. Par haan to sirf super hit back-to-back gaane aayenge. Masti Music Cafe.

0: थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो।
1: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन। फ्रेशली ब्रूड बीट्स

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: दो कुड़िया साड़ी गली च रहिंदियां एक पतली एक पहारी हो पहारी दाते ब्याह हो गया पतली लगे प्यारी के दाल में नमक भुल गई के दाल में नमक भुल गई जद खिच के हो जद खिच के छड़े ने अख मारी

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे। शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। योर डेली स्कूप ऑफ व्हाट्स हॉट, व्हाट्स वायरल एंड व्हाट्स वर्थ नोइंग, सर्व्ड फ्रेश विद ग्रेट म्यूजिक एंड माय अनबीटेबल चार्म, यू सी। Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje sirf Radio Masti 24/7 live par. Not all music is loud. Some songs just sneak in. What makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged. Your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.

0: सस्वीकार गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: सम शोज डोंट जस्ट प्ले, दे स्टे विद यू, एंड व्हेन आवर लिसनर्स आस्क फॉर मोर वी ब्रिंग देम बैक। Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for Encore show timings.
2: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.
3: Na Karan Arjun aayenge, na hi RJs aayenge. Filhaal to sirf super hit back to back gaane aayenge. मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: हाँ हाँ तुम ही डीजे तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस यू से वी प्ले बड़े बड़े हिट्स सुनो
1: एकदम फर्स्ट क्लास है ही आफ्टर ऑल जब सुबह और शाम मेरे साथ भी देखी तो फर्स्ट क्लास तो होगा ही होगा. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर शाम के बज चुके हैं 5:06. मस्ती वॉइस आपकी चॉइस बिल्कुल शुरू हो चुका है. सुबह आई थी, जी हाँ आई थी. अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया है तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आज ये बंदी सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर कल सुबह तक आई थिंक काम ही करती हुई आपको यहाँ पे पाई जाएगी. मैं तो ऐसा सोच रही थी कि मैं आज शिफ्ट ही हो जाती हूँ. नहीं, बहुत ही कमाल का आइडिया है. अक्सर मुझे ये आइडिया आता है मंडे रात को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मंडे रात को मैं शो करके कुछ घंटों के लिए तो घर जाती हूँ और फिर ट्यूसडे मॉर्निंग आ जाती हूँ. बट जिस दिन मुझे मंडे सुबह भी कर रही होती हूँ और शाम को भी कर रही होती हूँ, तो फिर मुझे बिल्कुल ही वो थॉट और भी ज्यादा अच्छा लगने लगा कि हाँ रेंट दे दूंगी यहीं पे रह जाती हूँ. बात बात कमिंग बैक टू दिस वन. भाई सुबह बहुत सारी ज्ञान की बातें हो गई, बहुत इंटेलिजेंट बातें हो गई, तो दुनिया भर की खबरें खोज खोज के लाकर जो है वो मैंने दे दी. तो इसीलिए डिसाइड किया है कि ये जो रिक्वेस्ट शो है हमारा, एक तो आपका और मेरा ये शेयर्ड जो है वेंचर है, राइट, जहां पे आप मुझे बताते हो कि आपको कौन सा गाना सुनने का मूड है. बट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज कि सारी हल्की फुल्की खबरें है ना हो जाता है, और कभी कभी ऐसा होना भी चाहिए कि अगर सुबह हैवी हो जाए तो शाम को थोड़ा सा लाइट रखना चाहिए. सो वह बिल्कुल कमान पकड़ लेते हैं. आज सुबह किसी ने मुझसे कहा कि अरे इतनी सीरियस बातें कर रही हूँ अंतरा सुबह सुबह. मैंने कहा मंडे मॉर्निंग शो है, बहुत सारी इंटेलिजेंट बातें कर रही हूँ. अगर मैं अब यूएस ईरान के बारे में बात कर रही हूँ और ऐसे हंसते हुए बात करूंगी तो बहुत ही अजीब लगेगा. या आई नो पीपल समटाइम्स थिंक कि इसके ऊपर यही ज्यादा सूट करता है. I also think so, to be very honest. मेरे पे यही ज्यादा सूट करता है. Coming up is a beautiful गाना, एकदम हमारे टाइप का. पूरा बिल्कुल 8 बजे तक जाएंगे. आपको सोचने का पूरा मौका दे रही हूँ कि क्या गाना सुनने का मूड है. बताए बताए, because this is मस्ती वॉइस आपकी चॉइस. Good evening.

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है, यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Masti Madness on Radio Masti 24/7.
2: Download Radio Masti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. Josh Mehra.
3: बजते ही नाचना जरूरी है। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले।
1: 5 बजकर हो चुके हैं 18 मिनट, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतर आपके साथ और यहाँ पर चल रहा है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस। सो वेल, कहानी शुरू करते हैं सलमान खान के काला हिरन से। नाउ वी ऑल नो अबाउट द ब्लैक बक केस, राइट? अब हुआ कुछ ऐसा, क्विक रिकैप, कि इसी केस के ऊपर एक डायरेक्टर साहब ने बना दिया एक मूवी। नाम उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत फाइट नहीं मारी और छुपाने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं की, क्योंकि नाम लिटरल ट्रांसलेशन काला हिरन उसमें दे दिया। अब इसको लेकर भी काफी सारी चीजें हुई। क्या हुआ कि भाई इन्होंने कर दिया ट्रेलर को रिलीज। ओके, नाउ ट्रेलर रिलीज हुआ तो उसमें जो बंदा सलमान खान की भूमिका निभा रहा था और गोविंद नामदेव और ये सारी जो शख्सियत है ये सारे उसमें नजर आए। द मोमेंट इट वेंट वायरल, गोविंद नामदेव जी ने कहा कि भाई हमें तो पता नहीं था कि ऐसा कुछ वो करने वाले थे, एंड इट हैड डायरेक्ट रिलेशनशिप विद ऐसा, क्योंकि भाई से पंगा लेना इंडस्ट्री में रहकर वो थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है। Sensitive topic, let me put it that way. But coming back to हमारे जो उसमें एक्टर साहब है, उन्होंने कहा नहीं, मुझे भी नहीं पता था। अब उनको भी लग गया कि भाई हमें तो बिल्कुल भी नहीं पंगा लेना चाहिए, अभी तुम्हारी मूवी भी नहीं रिलीज हुई है, आते ही बिल्कुल वापस भेज दिए जाएंगे। सो ये सारा का सारा हुआ। बट डायरेक्टर साहब जो इस मूवी के, उन्होंने वीडियो और बना दिया बाद में कि हम किसी से नहीं डरते, जिसको जो करना है कर लो, और मैं तो ये मूवी रिलीज करके रहूंगा, जो सच्चाई है वो सबके सामने आके रहेगी। ये सारा कुछ हुआ, ठीक है। नाउ मामला गया कोर्ट में, सलमान खान और उनके टीम ने कहा कि अब हम वहीं पर बात करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट जो है उन्होंने ऑर्डर, देन दिस इज द लेटेस्ट अपडेट अबाउट इट। सो दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है द रिमूवल ऑफ सोशल मीडिया के लिंक्स रिलेटेड टू काला हिरन द बैटल फॉर लेगेसी, चाहे वो एक्स पे हो चाहे वो यूट्यूब पे हो। एंड कोर्ट जो है दे ऑल्सो पुल्ड अप प्रोड्यूसर अमित जानी।

think in those footnotes about this whole situation. And Salman Khan, please connect with us 915 and 896 3. पर फिलहाल के लिए हम आपको यहाँ पे फुट नहीं एकदम अमेजिंग गाने सुनाएंगे. अच्छा सा म्यूजिकल ब्रेक लेकर वापस आते हैं. दिस इज मस्ती वॉइस, आपकी चॉइस ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट
2: 5:27 रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। टाइम फॉर ट्रैफिक का अपडेट। व्हीकल ब्रेकडाउन आपको इस वक्त मिलेगा ऑन केजेई टुवर्ड्स बीकेई आफ्टर बीकेई वुडलैंड्स। व्हीकल ब्रेकडाउन की खबर ऑन बीकेई टुवर्ड्स वुडलैंड्स आफ्टर केजेई, और व्हीकल ब्रेकडाउन की खबर ऑन टीपीई टुवर्ड्स एसएलई आफ्टर सेलेटर लिंक। सो वेल, ये था इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट। कमिंग अप नेक्स्ट, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से ये खूबसूरत सा गाना, क्योंकि जब तक जुनून और दीवानगी ना हो बॉस, लाइफ में कुछ भी करना बहुत ज्यादा मुश्किल सा लगता है ना, है ना। इसी अच्छी बात के साथ लेट्स मूव ऑन एंड आई विल बी राइट बैक।

0: हिट्स आपकी प्लेलिस्ट और हमारा थोड़ा सा मिर्च मसाला मस्ती बॉयस आपकी चॉइस यू से वी प्ले।
1: ओ माय गॉड विक्रांत मासी इज ऑन अ रोल माय डियर फ्रेंड्स ऑन अ रोल रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रब के साथ और यहाँ पर चल रहा है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस। वेल आई थिंक इट वाज 12th फेल जब मैं यहाँ पे ऑन एयर विक्रांत मासी के बारे में बात कर रही थी और उससे भी पहले देयर वाज दिस सीरीज पता नहीं आपने देखी है कि नहीं देखी है इट्स कॉल्ड ब्रोकन बट ब्यूटिफुल। इट्स एन लाइक आई पर्सनली लाइक ऐसे कहानियां जो थोड़ी सी फ्लॉड होती है जहाँ पे कैरेक्टर्स थोड़े से फ्लॉड होते हैं। इट्स नॉट अबाउट उसने क्या सही किया क्या गलत किया इट्स जस्ट लाइक एंड जब उसमें स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत ही सीमलेस ही होना तो वो बहुत ही खूबसूरत कहानियां बन के उभरती है विच टॉक्स अबाउट दोस ग्रे एरियाज इन रिलेशनशिप्स विच यूजली पीपल डू नॉट गो आउट एंड टॉक अबाउट इट सो ओपनली बट वेल विक्रांत मासी भाई उस जॉनर के जो है बहुत ही बड़े खिलाड़ी है इसलिए मैं कह रही हूँ ही इज ऑन अ रोल बिकॉज आई थिंक I watched two of his series recently and both were equally amazing. And yes, I will soon review them for you as well. But coming to this one, now Vikrant Mousi jo hai joins Ajay Devgan ki Chauhan, ek aur layered कैरेक्टर में ग्रे कैरेक्टर में। यस ये कास्टिंग न्यूज जो है आज के दिन में ड्रॉप हुई है विक्रांत मासी हैज बोर्डेड अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म चौहान इन अ की रोल जो कि डिस्क्राइब किया जा रहा है कि इट विल कम्प्लीटली ब्लो अवे योर माइंड क्योंकि विक्रांत मासी जो है ही इज ऑल्सो काइंड ऑफ वन ऑफ दोज पीपल जो कि सेलेक्ट करते हैं ऐसे स्क्रिप्ट जहां पे इट इज नॉट वेरी सीधा सीधा It has to be a little bit different, right? जैसे हम लोग आयुष्मान खुराना को हम बोल चुके थे कि ये बंदा जब भी कोई स्क्रिप्ट चॉइस करता है उसका चॉइस ही थोड़ी सी डिफरेंट है राइट सो शूटिंग जो है इस चौहान मूवी की अजय देवगन की जो है एक्सपेक्टेड है टू बिगिन लेटर दिस ईयर विद 2027 का रिलीज लॉक्ड इन सो लेट्स सी अजय देवगन प्लस विक्रांत मासी दिस वन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बिल्कुल इंटरेस्टिंग तो वैसे मैं भी हूँ है ना जान के देख लो फिलहाल के लिए गाना रिक्वेस्ट करके देख लो ना प्ले किया तो नाम बदल दे रहा मेरा हाँ पक्का मैं हर किसी के गाने प्ले करती हूँ जब तक है टाइम जब तक है टाइम जब तक है टाइम विच इज 8 PM गुड इवनिंग

0: हाँ हाँ तुम ही डीजे तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस यू से वी प्ले बड़े बड़े हिट्स सुनो
1: गेस हु सेड दैट मुझे डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत है आई थिंक मुझे ये अपने आप को भी कहना चाहिए बहुत जरूरी है रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतर आपके साथ यहाँ पे चल रहा है मस्ती वो हिसाब की चॉइस एंड गुड इवनिंग सपना आंटी कटलेट्स बना रही है जिससे इसको खाना है सपना आंटी से कनेक्ट कर ले मैंने सोचा कि जब आप मुझे बता ही रहे हो और जब मेरे मुंह में पानी आना है तो मैं सिर्फ अकेली इस बात पे क्यों जो है इतनी खुश हूँ सबको पता चलना चाहिए और जो जो जहां जहां काम कर रहे हैं उनको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ अरे कटलेट्स एंड लेट मी टेल यू शी मेक्स उनके हाथ का खाना इज अमेजिंग सो कंटिन्यूइंग टू डिजिटल डिटॉक्स सो हमारी कंगना रनौत जो है शी इज ब्लंट एंड ओवर द टाइम पीरियड होता है ना कोई कोई लोग ना इनिशियली जब वो इतने मुफट होते हैं तो आपको पसंद नहीं आते हैं बट ओवर द टाइम पीरियड आप रियलाइज करते हो कि कहीं डीप डाउन इनसाइड यू हैव स्टार्टेड लाइकिंग देम इट्स अ वेरी ह्यूमन थिंग राइट सो वेल इन्होंने डाला जरा अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर दैट नेवर इन माई लाइफ आई हैव सीन सो मच ऑफ अग्लीनेस इन वन प्लेस दीज रील्स फ्रॉम जेन जी प्रोटेस्ट आर like puke inducing her language of course the way they speak and the kind of language they are using really they are using never in my life I have seen everything in each and every frame so jarring and so crass all at once you who is oh my god who is birthing and raising them ? I'm just reading as it is, okay? India is a place of diversity, beautiful people draped in elegance and rooted in cultural sophistication. You call yourself cockroaches and look, behave like them as well. There is no paradox or just exposition there. Just simply subjecting the world to your filth, garbage and ugliness. I am scarred from the reels, need some healing and digital detox. okay. मैं तो इनका ये इंस्टाग्राम पोस्ट पढ़ते पढ़ते ही एंशियस हो गई ओके देयर आर नो सो बेसिकली आई स्टार्टेड विद शी हैज गॉट नो फिल्टर्स एट ऑल बट येट शी इज आल्सो टॉकिंग अबाउट यू नो हाउ Gen Z are not using proper language, so which confuses me a bit. But then ये मुद्दा वो है ही नहीं मैं तो सिर्फ आपको ये बता रही थी कि हमारी कंगना रनौत ने जो है वो इस तरह से कुछ कहा है और मैम सोच रही है कि वो जो है डिजिटल डिटॉक्स पे चली जाए विच इज अ गुड थिंग आई थिंक डिजिटल डिटॉक्स इज अ गुड थिंग फॉर एवरी वन वंस इन अ ब्लू मून गिव योर सेल्फ अ ब्रेक इट इज गोइंग टू हेल्प बट वेल सांस वापस लेते हुए बार नहीं कंगना रनौत का गाना नहीं प्ले करने वाली हूँ आई हैव दिस ब्यूटीफुल कोक स्टूडियो का गाना हाल ही में मैंने यहाँ किसी के फंक्शन में ये सुना एंड आई इट गॉट मी ग्रूविंग दैट ये बड़े दिन हो गए यार मैंने अपने शो पे कभी प्ले नहीं किया इनफैक्ट मैंने मुग्धा को सुना हुआ है उसके प्लेलिस्ट में कभी कभी ये गाना जरूर आ जाता है ममे खान साहब और उनका जो पूरा टीम है बहुत ही इट्स कॉल्ड चौधरी राइट एंड इट्स अ ब्यूटिफुल वन इट गिव्स यू दैट सच अ राजस्थानी वाइब विद द आवाज विद द म्यूजिक एंड विद द यू नो होल फील ऑफ इट सो हियर यू गो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव गुड इवनिंग

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: हाँ हाँ तुम ही डीजे तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस उसे वी प्ले बड़े बड़े हिट सुनो
1: I don't know. Whenever I listen to these kind of things, मुझे लगता है कि हे भगवान क्या ही आने वाला है. I cannot say कि brace yourself also because I am in the same industry and I have to talk about it. जब कभी भी ऐसी कोई movie release होगी. Anyway, welcome 6 बजे के उस पार आप सभी का स्वागत है. मस्ती boys आपकी choice आप यहाँ पर सुन रहे हो. आप बिंदास अपनी choice यहाँ पर बिल्कुल discuss कर सकते हो, बता सकते हो. और मैं यहाँ पे गानों की choice की बात कर रही हूँ, बिल्कुल play करूँगी. But the cover ki choice I have is quite different. Kartik Aaryan ek starrer Nagzilla, that is right. Godzilla, Nagzilla, but then of course he is going to be that Nag and shapeshifter type of thing. मतलब ऐसा मुझे ऐसा लगता है. The first look which they had shared quite some time back, उसमें कुछ ऐसा ही feel आया था. So भाई ये जो Nagzilla है ये wrap up हो चुका है इसका shoot. रवि किशन एंड टीम जो है वो सेलिब्रेट कर रही है कि भाई जैसे कि महावीर जैन है, मृगदीप सिंह है, कि धर्मा इज द बेस्ट कंपनी टू पार्टनर विद फॉर दिस. सो मोस्ट ऑफ द शूट Nagzilla का जो है कंप्लीट हो गया है, बट वन डे ऑफ फिल्मिंग जो है बचा हुआ रहता है इसमें. एंड ये जो है वो अपने डायरेक्टर साहब और राइटर साहब और को प्रोड्यूसर साहब जो है दे वर वेरी वेरी एक्साइटेड एंड वेरी इमोशनल एट द सेम टाइम. दे हैड शेयर्ड कि भाई काफी फन फिल्ड एंड मेमोरेबल जर्नी रही है जब इन्होंने ये मूवी बनाई. इट वॉज हेक्टिक येट हाईली एक्साइटिंग शूट फॉर द कास्ट एंड क्रू. नाउ ओके you say Nagzilla, you say Kartik Aaryan and then you put Dharma Productions into it and I really don't know how to react to this whole cocktail which they have kind of made. So बस वही है ना कि अब तो बस वेट एंड वॉच ही करना हमारे हाथ में रह गया है कि वेट करेंगे फिर वॉच करेंगे फिर उसके बाद क्या होगा वो तो अभी से नहीं बोले तो ज्यादा ही बेहतर है. I hope something good happens. The optimistic person inside me always says something like that. हर movie के लिए मुझे यही लगता है. But well, देखा जाएगा, क्या पता है. Some movies tend to surprise you. You know, there are some really good series which has been, Hindi series की मैं बात कर रही हूँ. Usually मैं दूसरे language की series की मैं बात करती हूँ. But there are some really good series I have watched recently and it's actually the content is good when we are talking about the OTT platform. Yeah. एक्चुअली मैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर फिलहाल के लिए बढ़ते हैं आगे. शकबाजी करेंगे इस गाने के साथ सुखी पाजी दिव्य कुमार साथ साथ में ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.

0: टू रूलिंग द काउंटडाउन. ये है मस्ती टॉप 20. नाउ पंपिंग अप योर थर्सडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स.
1: बजते ही नाचना जरूरी है. मस्ती वॉइस.

are talking about as well. By Christopher Nolan, jo hai aajkal har jagah pe unka naam filhal chhaya hua hai. He's an amazing filmmaker. We all know that. But him saying that he gets inspired by an Indian filmmaker is a big thing. And that filmmaker is none other than Satyajit Ray. Yes, one of India's greatest filmmakers history, agar cinema ki dekhi jaye. So, haal hi mein jab ye aaye he picked up the Apu trilogy and revealed unka deep admiration to iska Pather Panchali karke ek movie Ray sahab ki hai. And he says that it's a cinematic masterpiece. Completely blows mind. It also reminds me, जब हम film school में थे, like मैं, because मैंने masters media में कर रखा है, so हमारे एक class हुआ करती थी, films की class हुआ करती थी, और वहाँ पर सत्यजीत रे के मतलब there was one full chapter and you know काफी सारे classes सिर्फ उनकी movies हम बैठ के देखते थे and then हम लोगों को reports लिखनी पड़ती थी कि analyze करके कि what all you know किस तरह का camera angle क्या होता है, how only with dialogues and एंगल ऑफ द कैमरा एंड यू नो कैसे सिर्फ एक खाली स्पेस को भी जो है एक जुबान दे देती है. दैट वॉज ब्यूटी ऑफ रे साहब. एंड ऑफकोर्स उनकी कहानियां तो अमेजिंग ही है. बट डिस्पाइट ऑफ हिज अमेजिंग प्रोफाउंड अप्रिसिएशन, क्रिस्टोफर नोलन जो है उन्होंने बिल्कुल ये भी कहा कि इज येट टू वॉच द फाइनल टू चैप्टर्स ऑफ द लेजेंडरी फिल्म सीरीज अपराजितो, विच इज आई थिंक 1956 की है, एंड ओपो शौनशार, विच इज अनदर 1959, टू फाइनली विटनेस द कंक्लूजन ऑफ अपू'स जर्नी फ्रॉम चाइल्डहुड इन रूरल बंगाल टू एडल्टहुड. एंड ऑफकोर्स भाई जब इस तरह की चीजें कोई भी बोले और आज भी बोले कि मेरे लिए वो इंस्पिरेशन है, तो लगता है कि भाई उस बंदे ने सही में सिनेमा पढ़ा हुआ है. कॉलेज के दिन याद आ गए यार पूरी तरह से. सो वेल एनीवेज, कमिंग अप इज अनदर कॉलेज के दिनों का गाना. ना ना ना, द फील इज वेरी कॉलेज के दिनों का गाना, बट या इन अ वेरी डिफरेंट जॉनर ऑल टुगेदर. देवदी के साउंड ट्रैक से कमिंग अप नेक्स्ट, तोशी रायना की आवाज, इट्स परदेसी. आप सुन रहे मस्ती वॉइस, आपकी चॉइस.

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: स्टूडियो क्लब में बच के हैं 6:30। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर वक्त हो चला है कि आपको बताया जाए कि ट्रैफिक क्या है हाल और चाल इस घंटे। वेलकम ब्रेकडाउन आपको मिलेगा ऑन SLE टुवर्ड्स BKE आफ्टर इशुन। हैवी ट्रैफिक की खबर है ऑन PIE टुवर्ड्स चांगी बिटवीन KPE एंड स्टीवंस रोड। वेलकम ब्रेकडाउन आपको मिलेगा ऑन KJE टुवर्ड्स BKE एट BKE वुडलैंड्स एग्जिट। सो वेल दैट वाज द ट्रैफिक अपडेट ऑफ दिस घंटा। एंड यस, ब्यूटिफुल सोनू निगम नंबर, मूवी का नाम राज 2 चली जाता नहीं, बट दिस इज वन ऑफ माय वेरी वेरी नाइस एंड फील गुड सॉन्ग टाइप। रोमांटिक गानों की जब बात आती है सो या दिस इज वन ऑफ देम, वेरी वेरी नाइस। अमित की इस घंटे में उनकी रिक्वेस्ट ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। जस्ट लाइक अमित, यू कैन ऑल्सो रिक्वेस्ट गाना 9158963 पर। आपको बस आके मुझे है बताना। गुड इवनिंग।

0: हिट्स आपकी प्लेलिस्ट और हमारा थोड़ा सा मिर्च मसाला मस्ती वॉइस आपकी चॉइस यू से वी प्ले।
1: भाई अब अगर पासवर्ड आप भूल भी जाओ तो फिर सेल्फी वीडियो से आप साइन इन कर सकते हो। आई डोंट नो वेयर इज दिस technology thing going, but then well, whichever makes our life easier with the passwords is the one I choose. Radio Masti 24/7 live mein mantra aapke saath yahan par chal raha hai. Masti voice aapki choice. Because kya hai ki ek to passwords ka saath panga ye hai ki har jagah par aapko different dalne hain. Theek hai? Because I preach, I do it also. Har jagah par different dalne ke baad it cannot be simple, right? Wo kehta hai aapka isme ek upper case hona chahiye, usme ek falana hona chahiye, ek dhimka hona chahiye, ek janwar ka naam hona chahiye, ek aadmi का नाम होना चाहिए, ऑल दोस थिंग्स करके अब जैसे तैसे करके हर जगह पर अलग अलग पासवर्ड कर देते हो। उसके बाद देन एवरी यू नो 3 months यू हैव टू कीप ऑन चेंजिंग ऑल्सो पासवर्ड बिकॉज द टेक्नोलॉजी इज गेटिंग इम्प्रूव, द हैकर्स आर गेटिंग मोर इंटेलिजेंट और ये स्कैम आपके साथ भी हो सकता है एंड ऑल दोस थिंग्स। इसको मद्देनजर रखते हुए मिलॉर्ड हम क्या करें, कैसे याद रखें ये पासवर्ड्स, मेरे को तो ही समझ में नहीं आता। बट एनीवेज, सो गूगल हैज ऑफिशियली इंट्रोड्यूस्ड सेल्फी वीडियो साइन इन फॉर द गूगल अकाउंट्स, एक एडिशनल अकाउंट रिकवरी ऑप्शन ये जो है पिचाई साहब ने कहा है कि हम अब दिया करेंगे फॉर यूजर्स हु फॉरगेट देयर पासवर्ड या लूज एक्सेस टू देयर फोन या फिर लैपटॉप। सो एलिजिबल यूजर्स मस्ट एनेबल द फीचर इन एडवांस बाय रिकॉर्डिंग या फिर सेविंग एक सेल्फी वीडियो व्हाइल दे स्टिल हैव एक्सेस टू देयर अकाउंट। ओके, सो इफ दे लेटर कभी वो अपना पासवर्ड भूल जाए या फिर एक्सेस लूज कर दे अपने फोन से या कंप्यूटर से, गूगल में आस्क देम टू रिकॉर्ड अनदर शॉर्ट सेल्फी वीडियो। द न्यू रिकॉर्डिंग इज देन कंपेयर्ड विद द प्रीवियसली सेव्ड वीडियो टू हेल्प वेरीफाई देयर आइडेंटिटी एंड रिस्टोर द अकाउंट का एक्सेस। सो गूगल ये कह रहा है कि सेल्फी वीडियोज आर यूज ओनली फॉर साइन इन असिस्टेंस अनलेस यूजर्स जो है एक्सप्लिसिटली ऑप्ट इन टू अदर पर्पसेस। सो वीडियोज जो है स्टोर किए जाएंगे सिक्योरली एंड कैन बी डिलीटेड एट एनी टाइम। गूगल अकाउंट सेटिंग्स में जाके आप ये सारी चीजें कर सकते हो। दिस इज नॉट ट्रेडिशनल बायोमेट्रिक वाला ऑथेंटिकेशन बट अ रिकवरी टूल फॉर सिचुएशंस इन विच स्टैंडर्ड साइन इन मेथड्स जो है वो अनअवेलेबल होती है। कभी आप चक्कर में पड़े हो इसके फॉरगॉट पासवर्ड होके, फिर एक वो एक बड़ा सा सर्कल जो है चलता रहता है कि फिर वो पूछता है कि आपके रिकवरी ईमेल पे आपको कोड भेजे कि यहाँ पे भेजे। अब सोचो जिसके पास रिकवरी ईमेल भी पुराना वाला हो, उसका पासवर्ड भी अगर याद ना हो और जो उसमें नंबर डाला हो वो आज की डेट में चलता ना हो, तो फिर या गुड ऑन इट। सेल्फी वीडियो तो सही है लेकिन आजकल या फिल्टर्स का बड़ा मामला है, बट आई एम श्योर दे हैव थॉट अबाउट इट एज वेल। या रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आपको याद रहते हैं अपने सारे पासवर्ड्स, आई एम श्योर रहते होंगे। आप सब हो बहुत इंटेलिजेंट, क्या करें। गुड इवनिंग।

वजह तुम ही हो. मस्ती वॉइस आपकी चॉइस. यू से वी प्ले. बड़े बड़े हिट सुनो.

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. Josh mein raho.
1: How we wait for Friday? वो भी मंडे आते ही फ्राइडे का इंतजार शुरू हो जाता है. But Musti Madness, yes, this is one show that you should never ever miss because I think that is the perfect Friday show. और ऐसा शो आपको कहीं पर भी सुनने को नहीं मिलेगा. दैट इज वन शो इवन मी एंड रेणुका काइंड ऑफ लुक फॉरवर्ड टू. इट डी-स्ट्रेसेस अस लाइक देयर इज नो टुमारो. कोई बॉलीवुड की बात नहीं, कोई न्यूज वाली बात नहीं, इट इज ऑल दी अतरंगी चीजें विच इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. सो यस, अगर आपने इसका लुत्फ नहीं उठाया है, सो मेक श्योर दैट फ्राइडेज को मॉर्निंग 7 o'clock, 7 बजे से हम शुरू हो जाते हैं, 7 से 10, एंड देन ऑन को रहता है हमारे सैटरडे को शाम को 5 बजे से. सो दैट इज दैट. एंड उसके अलावा आई थिंक have a lot of other interesting jo hai as well this one shows jaise kal ek aane wala hai Dear Masti Dil Se where I think again it's a show wahan pe kuch aisi baatein karte hain hum log jo hum aur kisi show mein nahi karte hain and it's so very different. I think we also come jab hum wo show karne aate hain to hamara mindset bhi itna different zone mein chala jata hai and we really really appreciate people trusting us with their situations and we kind of make sure ki hum utni hi sincerity ke sath uska jo hai bilkul jawab dein. So well, that is that. Filhal ye ghante ko karte hain yahan par wrap up and 7 बजे उस पार जब हम आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि भाई खुशी कपूर नेक्स्ट कब और कहां दिखने वाली है. यस, शी इज नॉट डन एंड डस्टेड माय डियर फ्रेंड्स, शी इज गोइंग टू कम बैक विद वन एपिक मूवी का पार्ट 2. विच वन इज दैट? 7 बजे के उस पार. तब तक ये भी सोच के बताइए दैट कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप, बिकॉज दिस इज मस्ती वॉइस, आपकी चॉइस.

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो।
1: हाँ हाँ, तुम ही डीजे, तुम ही हो। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, उसे वी प्ले। बड़े बड़े हिट सुनो।
2: इतनी खुशी कि आप बिल्कुल ट्यून इन हो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। 7 बजे के उस पार बिल्कुल पहुंच चुके हैं। ये गाना हमारे एक लिसनर का काफी फेवरेट है। जब जब ये गाना हमारी प्लेलिस्ट में आता है, तब तब वो हमें लिखकर भेजते हैं कि अरे फिर से तुमने ये गाना चला दिया, इतना पसंद है मुझे ये गाना, बहुत ही प्यार ही आ जाता है तुम पर। इसीलिए हम और भी ज्यादा प्यार लेकर जो है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस में बिल्कुल ऐसे करके करते हैं, और जैसे ही हम उसको प्ले करते हैं, वो कहीं से तो आकर हमें बोलते हैं कि वी लव यू फॉर प्लेइंग दिस गाना, सो वी लव यू टू एज वेल। You know who am I talking to right now? जो सुन रहा है उसको पता चल गया है। But well, coming to हमारी अगली खबर, भाई श्रीदेवी जी did this amazing movie called Mom, okay? And it was good and her acting was really really good. अब बात कुछ ऐसे, यानी इट वॉज लाइक 2017 जब ये मूवी रिलीज हुई थी। आई रिमेम्बर इट वॉज माई कंप्लीट ऑनर स्पीकिंग टू श्री देवी जी उस मॉम के टाइम पर जब उनका इंटरव्यू लिया था। इट्स सो सरियल, यू नो। Anyways, amazing actress. So, अब उनकी बेटी खुशी कपूर जो है, she is set to pay tribute अपनी मम्मी को by starring in the sequel. अब खुशी ने किए हैं जोया अख्तर की The Archies. Okay, yeah. Archies, Nadania, Love Yappa. अब इन तीनों में से अब मेरा मुंह नहीं खुलवाओ तो ही अच्छा है. But putting all those behind her, खुशी जो है, she is now starting to kind of promising एक नए chapter के साथ Mom 2 में बिल्कुल नजर आने वाली है। So this film is expected to release in theaters in November, if reports की मानी जाए तो. Produced by her father, Boni Kapoor Sahab, and sequel is shot extensively in Noida and Crease, and also features Jishu Sen Gupta and Karishma Tanna key roles में. Talking about Khushi Kapoor, ये जो है, she will be carrying forward a dream that belonged to her and उनकी मम्मी श्रीदेवी जी as well. So yes, जिन्होंने थोड़े बहुत रशेस देखे हुए हैं, उन सोर्सेस ने ये कहा है कि भाई खुशी इज गोइंग टू नॉक यू आउट विद हर परफॉर्मेंस। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ यू नो, एक नई एक्ट्रेस का जन्म हुआ है, आपको ऐसे लगेगा। दो इट इज यूजुअली जानवी कपूर हु इज काइंड ऑफ कंपेयर्ड ऑल द टाइम श्रीदेवी जी से, बट दिस टाइम खुशी जो है वो भी बिल्कुल अपना ए गेम लाना चाहती है सामने विद दिस इमोशनल थ्रिलर। एंड यस, यू माइट सी शेड्स ऑफ श्रीदेवी जी इन हर, जस्ट एज इज द केस विद जानवी एज वेल। सो लेट्स सी, वी हैव टू वेट एंड वॉच। दिस इज द ओनली इन्फॉर्मेशन वी हैव राइट नाउ, बट देन या काइंड ऑफ लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। Having said that, another very underrated गाना यहाँ पर नेहा जो है उन्होंने ट्यून इन कर लिया है, एंड शी इज लाइक बनारसिया। यदि मैं बनारस से हूँ, एंड जब जब ये गाना सुनती हूँ, एक अलग सी ही मेरे मतलब अंदर का सिंगर जो है ना, एकदम सुर ताल में इस साथ में इस गाने के साथ गाने लगता है। सो या वाई नॉट, आई एम गोना नेहा प्ले दिस गाना फॉर यू। आप वहां पे गाना, मैं भी कोशिश करूंगी अपनी जितनी सुर ताल की समझ है उसके साथ। या कुछ ही

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: समझते ही नाचना जरूरी है। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले।
1: Who else is becoming talk of the town? Nibhai Bhumi Pednekar is here, ladies and gentlemen. Radio Masti 24/7 live par Antrap ke saath Masti Boys. Aapki choice yahan par chal raha hai. I think Bhumi Pednekar ki jo first choice of movie thi, which she did Dam Laga Ke Haisha mein, and she had, matlab, she lived the dream life, jahan pe unko khana tha, bahut sara khana tha, so that she can put on weight. But I think even usse bhi zyada difficult journey unki wapas reverse jane mein hui to get back to the shape she is currently in now. But then the effect she had, that sometimes it is timing which does not work, right? Us waqt jab usually logo ko bada dismiss kar diya jata hai ki bhai nahi nahi aap na wazan ghata ke aaiye and all those things, she did a movie which suited and she did fantastically well. The movie did so well and everything, and now that you know she is quite fit and she is like up for anything which is coming her way, उनके और किसी मूवी ने उतना अच्छा नहीं किया जितना उनकी उस फर्स्ट मूवी ने किया. सो इट्स लाइक दैट. बट देन अगेन शी इज मेकिंग न्यूज राइट नाउ. भाई Bhumi Pednekar जो है हैज बीन रोप्ड इन एज द लेजेंडरी वॉरियर क्वीन बिलावरी मलम्बा इन संदीप सिंह की एम्बिशियस टू पार्ट हिस्टोरिकल एपिक द प्राइड ऑफ भारत छत्रपति शिवाजी महाराज. ऋषभ शेट्टी जो है इसमें लीडिंग किरदार में नजर आने वाले हैं एंड एज द ग्रेट छत्रपति शिवाजी महाराज विद अर्जुन रामपाल एंड विवेक ओब्रॉय. They are also going to play some very, very important roles in this. So, इस फिल्म में ऑलरेडी नेशनल अवार्ड विनिंग टैलेंट जो है अमित त्रिवेदी का हाथ है इन द म्यूजिक एंड प्रसून जोशी का हाथ है इन द लिरिक्स, वाइल विशी विरवानी जो है he has penned the screen play. See, all these three names are just kind of fantastic. It is just what I want to know that when they are going to get together, ultimately jo bahar result aayega wo kaisa

होगा. सो प्री प्रोडक्शन जो है इज इन फुल स्विंग एट द पॉइंट एंड कैमराज जो है दे आर ऑल सेट टू रोल लेटर दिस ईयर. एक काफी काफी पावरफुल चैप्टर ऑफ मराठा हिस्ट्री इज अबाउट कम अलाइव ऑन बिग स्क्रीन विद दिस एंड लेट्स सी वेदर इट कैन चेंज द कोर्स ऑफ भूमि पेडनेकर का जो है करियर ग्राफ जिस हिसाब से और जहां जहां चलता हुआ जा रहा है. आई होप शी डज वेल. हमने तो सबके लिए अच्छा ही सोचना है. Coming up next is Ash King के साथ Sid Malhotra and Raftaar. And they say that बंदूक मेरी लैला. दो समटाइम्स ये सारे लिरिक्स जो है ना कोई सेंस नहीं बनाते बट है जी ऐसे गाने भी हैं. गुड इवनिंग.

0: बाजू
1: ट्रैफिक अपडेट
2: 7:32 हो चुके हैं। स्टूडियो क्लॉक में आपको बताया कि इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट क्या है। व्हीकल ब्रेकडाउन आपको मिलेगा ऑन टीपीई टुवर्ड्स एसएलई आफ्टर सीटीई। व्हीकल ब्रेकडाउन की खबर ऑन पीआईई टुवर्ड्स टुवर्स आफ्टर बिडॉक नॉर्थ एवेन्यू 3। और हैवी ट्रैफिक आपको इस वक्त मिलेगा ऑन पीआईई टुवर्ड्स अगर आप जा रहे हैं टुवर्स बिटवीन जेरोम टाउन हॉल रोड एंड क्लेमेंटी एवेन्यू 6। यह था इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट। सपना थी आपका रिक्वेस्ट, बस प्ले करूंगी अब से कुछ ही देर में, सो यू स्टे ट्यून्ड। एंड बस कुछ देर और बाकी है यहाँ पर। इफ यू हैव अ सॉन्ग रिक्वेस्ट ऑफ योर चॉइस डू लेट मी नो 9151 8963 पर। बिल्कुल 8 बजे से पहले पहले तक मैं कोशिश पूरी करूंगी कि वो मैं प्ले कर दूं, अदरवाइज आपको मेरे गाने तो पसंद आ ही रहे होंगे, दैट इज फॉर श्योर। अरे वो भी बताने के लिए टेक्स्ट तो करना पड़ेगा ना, पता कैसे चलेगा। गुड इवनिंग।

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.

0: आपके हिट्स, आपकी प्लेलिस्ट और हमारा थोड़ा सा मिर्च मसाला। मस्ती बॉयस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले।
1: कैसे मेरे को सवाल पूछने पड़ते हैं ताकि आप उस तरह से मुझे जवाब दो। स्मूथ तो मैं हूँ। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतर आपके साथ, मस्ती वॉइस आपकी चॉइस जो है वो चल रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले यूं ही ऐसे ही पूछ लिया था कि अगर नहीं भी पसंद आ रहे हो तो वो भी बताने के लिए टेक्स्ट तो करना ही पड़ेगा। निकिता, यू आर अ स्वीट हार्ट As always, निकिता लिख रही है, बिल्कुल आ रहे हैं, नेहा इज लाइक, बता तो दिया तुमने, चला तो दिया, बाकी लेट मी सिट एंड एंजॉय तुम्हारी बातें और तुम्हारे गाने। एंड यस, फॉर एवरीवन एल्स हु हैव रिटन बैक टू मी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यहाँ पर जो है भोपाल से मेरे पास वॉइस नोट्स आए हैं, ठीक है, कि आजकल तुम नजर नहीं आते हो, आजकल बड़ी बिजी हो गई हो।
2: इतने बिजी बिजी क्यों हूँ, काम कर रही हो क्या? हाँ हाँ हाँ, बताओ बताओ बताओ बताओ बताओ। इतने बिजी होगी, के भूल गई, के को भूल गई।
1: ओह गॉड, दिस इज सो स्वीट। अच्छा, यहाँ पे बात ये है कि बिजी ये सारे हैं, है ना। मैं तो अपना टाइम टू टाइम यहाँ पे जब बोलती हूँ आकर आपके साथ उतना टाइम स्पेंड करती हूँ। बिजी खुद है और मुझसे पूछ रहे हैं, अच्छा बिजी बड़ी हो तुम, यू नो। वो एक दोस्त जो हमेशा होता है आके उल्टा आपको ही बोलता है कि अरे क्या हो गया, लेट खुद आएंगे और उसके बाद बोलेंगे, वेरी बैड केयर इनके हैं, ऐसे ऐसे बोलते हैं कोई, बट मैं बिजी नहीं हूँ तुम्हारे लिए, हमेशा मेरे पास टाइम है। आप लोग सारे बिजी हो, तुम्हारी मम्मी और तुम दोनों सबसे ज्यादा बिजी प्राणी। सो बट आई एम ऑनर्ड एंड आई एम ग्लैड दैट आप सभी अपने बिजी बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकालते हैं एंड यू ट्यून इन टू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, ट्यून इन टू आवर शोज, गिव अस सो मच ऑफ लव। आप है तो ही तो हम है। हाय, इसी बात पे गुलाबों को बुलाती हूँ, वो गाना गाएगी मेरे लिए यहाँ पे। विशाल ददलानी जी जरा प्ले करें रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, जरा गंध फैला दो, टिंग टिंग टिंग।

0: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere, anytime.
1: भाई जिन्होंने अगला गाना रिक्वेस्ट किया है उनके घर में बन चुका है उनका डिनर, डोसा खाते खाते जो है ये उनका रिक्वेस्ट एंजॉय करने वाली है। सप्लांटी, हियर यू गो। आज जो आपने मुझे एक काम दिया था बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, ये गाना आपके लिए ऑन मस्ती वॉइस, आपकी चॉइस। ऑफकोर्स इट्स रेट्रो, ऑफकोर्स इट्स ओनली फॉर यू। वेल एंजॉय।

हाँ, तुम ही डीजे तुम ही हो। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस। यू से वी प्ले। बड़े बड़े हिट सुनो।

0: मैं कह रही हूँ कि आज रात पक्का मुझे यहीं पे सोना चाहिए. इट इज लाइक लिटरली स्टार्टेड टू फील लाइक वेरी वेरी कंफर्टेबल. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर. जी हाँ, मस्ती वॉइस आपकी चॉइस को यहाँ पे करते हैं रैप अप. कल सुबह आपसे होगी मुलाकात. एंड यस, इट विल नॉट फील लाइक मंडे मॉर्निंग, इट इज गोइंग टू बी अ ट्यूसडे मॉर्निंग बिकॉज आई विल बी देयर विद मस्ती का मंत्रा. अंशा के साथ आप स्पेंड करिएगा सुबह सुबह 3 घंटे, फिर शाम को डियर मस्ती दिल से होगा. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो है बिल्कुल बाकी की बातें कल करेंगे. अभी जो है जाते हैं, थोड़ा डिनर विनर करते हैं और बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, है ना. एंड आई विल मीट यू वेरी वेरी सून. होप यू एंजॉय द शो, होप आई प्लेड ऑल योर गानास, एंड होप यू हैव अ फैंटास्टिक इवनिंग अहेड. दैट्स व्हाट आई विश फॉर. बाय बाय, टेक केयर. एंड जुलाई 27 हो गई गाइस, जुलाई का महीना भी खत्म हो चला है. कांट बिलीव इट. बाय बाय, गुड नाइट.
1: Brothers for life, Mika Singh.

थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: कहते हैं यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, गौर फरमाइएगा, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना तेरा आशियाना, वो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। क्या बात है, इस खूबसूरत से मोटिवेशनल कोट के साथ लीजिए मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ। मेरा नाम है समर, रेडियो 24/7 लाइव पर दोनों बाहें फैला कर रहा हूँ आपका इस्तकबाल, स्वागत। केम चे सिंगापुर सारू जे, नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। तो जी आज के लेजेंड्स की अचीवर सीरीज हम शुरू करें, एक कहानी सुनाएं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये साफ है कि मंजिल पानी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी और सही दिशा में सही सोच के साथ करनी पड़ेगी, और पैशन यानी कि जुनून वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि मंजिल को पाने के रास्ते में ये जुनून ना हो तो वहां तक पहुंचने के बारे में सोचना भी बेमानी रहता है कि नहीं, सही कह रहा हूं ना। तो चलिए इसी खूबसूरत बात के साथ शुरू करते हैं आज का अचीवर सीरीज का ये एपिसोड। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आप हैं मेरे साथ और आपका ढेर सारा प्यार हमें लगातार मिल रहा है। आपको ये शो कैसा लगता है इसके बारे में हमारे फेसबुक पेज पर आकर आप हमें यूं ही बता दे रहेगा। आज हम जिस लेजेंड की बात करने जा रहे हैं सिंगापुर, वो एक सक्सेसफुल नहीं बल्कि सुपर सक्सेसफुल लेडी है। जी हाँ, सुपर सक्सेसफुल इसलिए कि उन्होंने इंडिया का तो नाम रोशन किया ही है, यूएसए अमेरिका तक की इकोनॉमी को मजबूत करने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। एनी गैसेस? चलिए ज्यादा इंतजार नहीं करवाते हुए मैं ही तारुफ करवा देता हूँ। हमारी आज की लेजेंड है कई सालों तक दुनिया की सबसे पावरफुल और सक्सेसफुल लेडीज की फेहरिस्त में शामिल रहने वाली इंदिरा नोई जी। जी आपको बताऊंगा इस पावरफुल वुमन की सक्सेस के पीछे का वो राज जो आप जानना चाहेंगे, वो कहानी जो हम सबको इंस्पायर कर सकती है। तो अभी शो के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सुन लेते हैं बेहतरीन से गाने, लौट कर आएंगे तो हम इस कहानी को शुरू से शुरू करेंगे। आप गौर से सुनिएगा, आज आप बहुत कुछ जानेंगे और साथ में सीखेंगे भी। सो एंजॉय रेडियो मसी 24/7 लाइव। मैं लौटता हूँ इन गानों के बाद।

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: कहानियां उनकी जिनके होने से हम हैं। सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
2: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लेजेंड्स के अचीवर सीरीज में। आज हमने खोली हुई है किताब इंडियन अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव इंदिरा नुई जी की। इंदिरा नुई के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, जो पेप्सिको कंपनी की सीईओ और प्रेसिडेंट तक रह चुकी हैं। इतना ही नहीं, उनका नाम वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में भी शामिल रह चुका है। बट यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं होता साहब, उनका भी ये सफर बहुत ही मुश्किलों और चैलेंजेस से भरा रहा, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। पर अभी के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक पर चलते हैं और जान लेते हैं इंदिरा जी के चाइल्डहुड के बारे में। हाँ, तो अमेरिका में रहकर बुलंदियों के झंडे गाड़कर हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाली इंदिरा नुई जी का जन्म हुआ चेन्नई में। चेन्नई जो पहले मद्रास हुआ करती थी, तमिलनाडु की कैपिटल। फादर बैंक में एम्प्लॉय थे और मदर हाउसवाइफ, तो कह सकते हैं कि बहुत ही साधारण सा परिवार था उनका। बहनें थीं ये दो, एक का नाम है चंद्रिका, और जो चंद्रिका जी है ना, वो भी एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस वुमन है और एक बेहतरीन सिंगर।

इधर कम म्यूजिशियन भी हैं। हाँ, उन्हें एक वक्त में ग्रैमी अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। दोनों बहनें पढ़ने में अव्वल दर्जे की रहीं। स्कूलिंग मद्रास के ही होली एंजल्स एंग्लो इंडियन स्कूल से हुई, जिसके बाद उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद ये चली गई कोलकाता, जहाँ के IIM से उन्होंने मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। मैंने कहा था ना, पढ़ाई में वो सुपर टैलेंटेड रही शुरू से आखिर तक जी। फिर तो मैडम इंडिया से चली गई अमेरिका, येल यूनिवर्सिटी अमेरिका, जहां से इंदिरा नूई जी ने पब्लिक एंड प्राइवेट मैनेजमेंट सब्जेक्ट पर स्टडी कंप्लीट की। अमेरिका जब कोई जाता है तो उसे वो भा जाता है, तो इंदिरा जी को भी वो ऐसा भाया कि फिर तो वो जैसे वहीं की होकर रह गई। येल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने बोस्टन कंसल्टेशन फर्म ज्वाइन कर ली और टेक्सटाइल एंड कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री में मुवक्किलों की सेवा करने लगी। वेल, ये सब जानकर आप सभी को ये तो पता चल गया होगा कि इंदिरा जी ने पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी है, जिसका आगे चलकर उनको बहुत फायदा भी मिला। क्या रहा वो फायदा मैं आपको आगे बताऊंगा, पर फिलहाल चलते हैं एक बेहतरीन म्यूजिकल ब्रेक की तरफ। लौटेंगे इन गानों के बाद और कहानी को आगे बढ़ाएंगे। इंदिरा नूई जी की कहानी आप सुन रहे हैं समर की जुबानी।

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ। हाँ।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: सुस्वागतम, वेलकम, खुशामदीद, आप सब आए तो देखिए बाहर आ गई है रेडियो मस्ती 24/7 लाइव के स्टूडियोज में। रोशनी ज्यादा ज्यादा और ज्यादा हो गई है। लेजेंड्स के अचीवर सीरीज में मैं हूँ समर और आज मैं बात कर रहा हूँ इंदिरा नोई जी की। जैसे कि हम जानते हैं कि हर बच्चे का फर्स्ट स्कूल उसका खुद का घर होता है और जो पेरेंट्स होते हैं ना वो उसके पहले टीचर होते हैं। ठीक वैसा ही इंदिरा नोई जी की लाइफ में भी रहा। उनके पेरेंट्स की सीख का असर इंदिरा और उनकी बहन पर जिंदगी भर तक रहा। और हाँ, यही वो सीख और नसीहतें थी बचपन की जो आगे चलकर सक्सेस की वजह भी बनी। वेल, जहां तक मैंने पढ़ा है इंदिरा जी के बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि उन पर फादर से ज्यादा मदर की बातों का असर था, मतलब ज्यादा प्रभाव था। दरअसल शुरुआती दिनों में उनकी माँ ने दोनों बेटियों को घर पर ही रहकर ऐसे ऐसे खेल खिलवाए जिन्होंने उनकी लाइफ को सही दिशा में शेप देने का शुरू से ही काम कर दिया था। इंदिरा नूई ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी मदर हर रात डिनर के बाद उनसे ये इमेजिन करने के लिए कहती थी, कल्पना करने के लिए कहती थी कि सोच कर देखो कि तुम किसी देश की प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो और ऐसा सोचकर बताओ कि तुम अपनी कंट्री के लिए क्या क्या करती। और इसके लिए इन दोनों बहनों को कुछ वक्त दिया जाता सोचने के लिए ताकि वो अलग अलग से इसे प्रिपेयर कर सकें, प्लानिंग कर सकें और फिर माँ के साथ बैठकर सामने बैठकर अदर प्रेजेंट करती थी और उसके बाद माँ ही उन्हें जज करती थी और डिसाइड करती थी कि कौन उस दिन बेहतर रहा, है ना। वेल साहब, क्या कमाल का मजेदार खेल है, मजा का मजा। और फ्यूचर में एक लीडिंग रोल आपको कैसे निभाना है इसकी तैयारी भी हो रही है। तो इसी खेल खेल में इंदिरा नोई जी का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता चला गया। और हाँ, एक बात और कि उनके पेरेंट्स भले ही उनके गाइड रहे पर कभी भी बच्चों पर करियर को लेकर जरा भी उन्होंने दबाव नहीं बनाया बल्कि उन्हें हर वक्त सपोर्ट ही किया। और जैसे कि मैंने बताया था ना कि इंदिरा शुरू से ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रही हैं तो यही वजह थी कि क्लास के दूसरे स्टूडेंट्स कुछ समझ नहीं आने पर उनकी हेल्प लिया करते थे। अब सोचिए जिसकी परवरिश ही ऐसी हुई हो वो लाइफ और करियर की लंबी रेस में जितने भी सारे हर्डल्स आते हैं वो उन्हें पार करने के लिए एक तरह से तैयार हो ही जाता है। मानते कि नहीं मानते आप, बस पेरेंट्स की सीख और अच्छे संस्कार से इंदिरा नोई भी आगे बढ़ने लगी और हर तरह के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गई। उनकी जिंदगी में आगे क्या हुआ और वो कॉर्पोरेट सेक्टर में कैसे आई और कैसे उन्होंने ग्रो किया, ये सब आप भी जानना चाहते हैं, मैं भी बताने को बेताब हूँ। पर अभी वक्त हो चला एक और म्यूजिकल ब्रेक का, तो जल्दी से सुन लेते हैं ये खूबसूरत गाने और जल्दी से लौट कर आइएगा। लेजेंड्स के अचीवर सीरीज जारी है सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया के एकमात्र लाइव हिंदी बॉलीवुड रेडियो, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। मैं हूं समर आपके साथ।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: मुझे मालूम था आप कहीं जा नहीं सकते, आज चिपक कर सुन रहे हैं आप रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, जहां पर मैं समर अचीवर सीरीज लेजेंड्स की अचीवर सीरीज में इंदिरा नुई जी की कहानी आप तक पहुंचा रहा हूं। हाँ, तो म्यूजिकल ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे इंदिरा नुई जी का बचपन गुजरा और पेरेंट्स की सीख और एजुकेशन में अव्वल रहते हुए वो कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। अब हम चाहे IIM कोलकाता की बात करें या अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी की, उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन मैनेजमेंट सब्जेक्ट से की थी, तो ये तो तय हो गया था कि वो अब या तो एंटरप्रेन्योर बनेंगी या कॉर्पोरेट सेक्टर में थोड़ा बहुत काम वाम कर लेंगी। और वैसे भी ये तो उस वक्त कह नहीं सकते थे ना कि यही लेडी आगे चलकर इंडिया या अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मोस्ट पावरफुल सुपर लेडी बनकर उभरेगी। वेल, इंदिरा जी की आगे बढ़ने का सक्सेस का मंत्र रहा है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना, शॉर्टकट नहीं लेना। अच्छी जॉब्स की अगर बात करें तो उन्होंने मोटोरोला कंपनी में बतौर वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिस्ट ज्वाइन किया था और यहीं से उनकी लीडरशिप क्वालिटीज भी और ज्यादा पैनी होती चली गई। इसके बाद इस कॉर्पोरेट लेडी की जिंदगी में आया लाइफ का सबसे बड़ा और अहम पड़ाव जिसने उनको बुलंदियों तक पहुंचाने का काम किया। जी हां, इंदिरा नुई जी की नई ज्वाइनिंग हुई दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक पेप्सिको में। कौन नहीं जानता था इस नाम को, इनफैक्ट अब भी ये नाम अक्सर हमारी जबान पर रहता है। खैर, यहां वो कंपनी के साथ जुड़ी 1994 में और अपनी काबिलियत के दम पर 2001 तक वो यहां की प्रेसिडेंट और फिर 2006 में CEO तक बन गई। जरा सोच कर देखिए, पेप्सिको कंपनी की प्रेसिडेंट और CEO, वाओ, और वो भी एक इंडिया को बिलोंग करने वाली लेडी, है ना कमाल की बात और बहुत गर्व की बात, बहुत प्राउड की बात है। वेल, इस एक कंपनी में 12 साल उन्होंने दिए, 12 साल, और लॉन्ग एंड सक्सेसफुल जर्नी रही उनकी ये। यहां तक पहुंचने पर उनके नाम और काम से हर कोई वाकिफ हो चुका था। 2018 में जाकर उन्होंने इस कंपनी से स्टेप डाउन किया। बहुत ही इमोशनल पल था वो, बताऊंगा उस भावुक पल के बारे में भी, लेकिन अभी तो एक और म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं। म्यूजिकल ब्रेक के बाद पेप्सिको से विदाई लेते हुए क्या कुछ मैसेज इंदिरा नुई ने दिया सबको, बताऊंगा आपको। सुनते रहिए रेडियो 24/7 लाइव पर समर के साथ लेजेंड्स की अचीवर सीरीज।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: कहानियाँ उनकी जिनके होने से हम हैं, सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
4: सुस्वागत है आप सभी का इस्तकबाल, मैं हूँ समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं लेजेंड्स द अचीवर सीरीज। आज बात हो रही है इंदिरा नुई जी की। दुनिया के सबसे पावरफुल सीईओज में से एक बनने का ये सफर इंदिरा नुई जी के लिए आसान नहीं था, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल होने के साथ ही एक पत्नी और एक माँ का किरदार भी निभा रही थी, लिहाजा दोनों नावों में सवारी करना उनके लिए बेहद मुश्किल भरा था। और इस बात का जिक्र, या यूं कहिए कि इस राज से पर्दा उन्होंने तब उठाया जब वो पेप्सिको कंपनी के सीईओ पोजीशन से स्टेप डाउन कर रही थी। दरअसल नुई ने कई सालों तक इस कंपनी की कमान संभाली और अलविदा कहते हुए अपने एम्प्लॉइज के लिए एक ओपन लेटर लिखा। उस लेटर में ही उन्होंने जैसे अपने दिल के तमाम जज्बात लिख डाले थे। बताया कि जॉब के साथ साथ घर परिवार को संभालना या कहें दोनों के बीच बैलेंस रखना एक लेडी के लिए कितना चैलेंजिंग रहता है, जैसा उनके साथ भी रहा। उन्होंने बताया कि करियर का ग्राफ लगातार प्रोग्रेस करता रहा, पर कई बार मन में एक टीस भी रही कि शायद मैं काम से ज्यादा अपने परिवार को प्रायोरिटी देती तो बेहतर रहता। लेटर में लिखा उन्होंने कि मेरी लाइफ में मुझे अमेजिंग करियर मिला, पर ईमानदारी से कहूं तो मैं सोचती हूं कि काश मैंने काम से ज्यादा अपने बच्चों और परिवार को वक्त दिया होता, काश। वेल, एक ऐसी ही बात को याद करते उन्होंने अपनी बेटी के उस प्रोटेस्ट का भी जिक्र किया जब एक रेनोवेशन वर्क की वजह से उनकी ऑफिशियल टेबल वहां से हटाई जा रही थी। ये देखकर बेटी ने गुस्से से उन्हें कहा था, ये क्या माँ, ये टेबल कहाँ जा रही है, जिसके नीचे बैठकर मैं खेला करती थी और कभी कभी सो भी जाया करती थी, आप इसे किसी और के यहाँ कैसे भिजवा सकती हैं। और ऐसा प्रोटेस्ट एक बार नहीं, कई बार उनकी बेटी ने किया। एक बार तो बेटी ने मम्मी के नाम लेटर लिखा, मम्मी प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज, जी हाँ 5 दफा प्लीज लिखते हुए कहा, घर आ जाओ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन और ज्यादा प्यार करूंगी जब आप घर आएंगे। ऐसी ऐसी बेटी की बातें उन्हें कई बार कछोटती थी। इसलिए इंदिरा नुई जी कहती हैं कि एक तरफ फॉर्च्यून 500 कंपनी में सीईओ जैसे बड़े ओहदे पे काम करना और एक तरफ परिवार को संभालना सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क रहता है, समझ गए ना आप। खैर, एक और ऐसा किस्सा नुई जी की चैलेंजिंग जिंदगी को सुनाऊंगा, लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए समर के साथ लेजेंड्स के अचीवर सीरीज रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: वेलकम बैक, मैं हूं समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप मुझे सुन रहे हैं। और जिनकी कहानी में आज आप इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उनका नाम है इंदिरा नुई। लेजेंड्स के अचीवर सीरीज रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर एक बार फिर से हाजिर है। म्यूजिकल ब्रेक से पहले हमने बात की थी कि किस तरह से एक लेडी को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जब वो वर्क प्लेस पर रहती है, और साथ ही साथ घर परिवार को संभालने का भी उन पर दबाव रहता है। वैसे ऐसी बात हम एक नॉर्मल लेडी के बारे में तो सोच सकते हैं, बट वर्ल्ड की सबसे दमदार और टॉप कॉर्पोरेट रह चुकी इंदिरा नुई के साथ भी ठीक वैसा ही होना सोचने पर मजबूर कर देता है ना। लेकिन ये हम सभी को एक लेसन भी देता है, खासतौर से लेडीज के लिए, कि घर और काम साथ साथ और वो भी सक्सेसफुल तरीके से निभाना आसान नहीं रहता। इंदिरा नुई जी की जॉब के बीच फैमिली प्रॉब्लम से जुड़ा एक और वाकया भी आया जिसे वो कभी कभार शेयर भी करती रहती हैं। ये बात तब की है जब उन्हें प्रमोट करते हुए पेप्सिको कंपनी का प्रेसिडेंट बनाया गया। जी हाँ, उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया, और इंदिरा नुई के लिए ये प्रमोशनल अपॉइंटमेंट किसी सपने से कम नहीं था। वैसे उन्हें ये खुशखबरी तब मिली जब वो ऑफिस में ही थी। कहते ना, जब कोई ऐसा बड़ा और धमाकेदार ऑफर मिलता है तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बस वैसे ही कुछ हुआ उनके साथ भी, वो उस प्रमोशन की बात से बहुत खुश हुई। जब वो घर पहुंची तो उनकी मदर इन लॉ ने इस बात पर, इस प्रमोशन पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, पर जब उन्होंने माँ से कहा, मम्मा मैं आज बहुत खुश हूँ, आपको भी ये बड़ी खुशखबरी बतानी है, इस पर जवाब आया, ये सब बातें बाद में करते रहना, जाओ जाकर पहले दूध ले आओ, घर पर दूध खत्म हो गया। बताइए, कोई इतनी बड़ी खुशी के मौके पर आपको ऐसा रिप्लाई दे या कुछ ऐसा ऑर्डर दे दे तो कैसा लगेगा। बहरहाल, जब वो सुपर स्टोर से दूध लेकर वापस लौटी तो उन्होंने पेप्सिको प्रेसिडेंट के बारे में माँ को बताया। तब माँ ने उन्हें ऐसा ज्ञान पिलाया जो आज तक वो भूल नहीं सकती। वो खुद कहती है कि तब माँ ने कहा था, देखो इंदिरा, ऑफिस की बात ऑफिस में छोड़कर आया करो, प्रमोशन प्रमोशन ठीक है, पर यहां घर पर तुम सबसे पहले एक पत्नी हो, एक माँ हो, अगर घर पर दूध की जरूरत है तो तुम्हें उस पर प्रायोरिटी देनी चाहिए, उसे पहले लाना चाहिए। बस वो बात उनके दिलो दिमाग पर आज तक रह रह कर खटकती है। मानते ना आपके लेजेंड बनने का ये सफर कितना मुश्किल होता है। बहरहाल, आगे और भी कुछ दिलचस्प बातें इंदिरा नुई जी के बारे में है मेरे पास, फिलहाल यहाँ एक और म्यूजिकल ब्रेक की दरकार है, ले लेते हैं इसे, इसके बाद फिर से आएंगे, कहानी को आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, सब सुनिए और जरूर सुनिए रेडियो मसी 24/7 लाइव पर।
2: वेलकम फ्रेंड्स टू द शो दैट नेवर एंड्स, आई हैव टेकन द चांस टू मेक यू डांस, you will move your feet and groove to the beat. So then, which beat would you like? Dosto, kaun sa dance pasand karenge aap? Rumba?
3: No!
4: No!
2: Samba?
4: No!
3: No!
2: Rumba?
4: No!
2: Samba?
4: No!
2: Tequila?
4: No!
2: Tango?
4: No!
2: Charleston?
4: No!
2: Polka?
4: No!

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल व्हाट्सएप टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।

समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। लीजिए एक बार फिर से हाजिर है समर रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर लेजेंड्स के अचीवर सीरीज में इंदिरा नुई जी की कहानी लेकर। इंदिरा नुई की काबिलियत और लीडरशिप स्किल्स का लोहा हर कोई समझने लगा था, यहाँ तक कि जब 2012 के आसपास अमेरिका में मंदी का दौर चल रहा था तब अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने उन्हें इससे निपटने और इकोनॉमिक स्ट्रेटजी सजेस्ट करने के लिए इनवाइट किया था। अब बताइए, मानते हैं इस लेडी का दम? वेल, नुई का मानना है कि आप अपने अंदर एक खास तरह की स्किल को खोजें जिसमें आप सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। वो कहती थी कि आपकी स्किल ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को ऐसा एहसास हो कि कोई पर्टिकुलर काम आपके अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। और उन्होंने एक बार कहा भी था, अपने पूरे करियर में मैं जो कुछ भी सीखी हूँ तो वो है मुश्किल काम को आसान बनाना। चाहे कोई भी मसला हो, कोई मुझे एक मुश्किल काम देता है तो मैं एक स्टूडेंट बन जाती हूँ। मुझे इस बात की तब परवाह नहीं होती कि मैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी की सीईओ हूँ या प्रेसिडेंट हूँ या सीएफओ हूँ, तब मैं सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट बन जाती हूँ। ओ वाओ, इंस्पायरिंग, काफी अच्छा है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि मैं एक दुकानदार हूँ, इसलिए मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हर एंगल से सोचना चाहिए। अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए हमें कस्टमर क्या सोच रहा है, कंज्यूमर की क्या सोच होती है, वैसी सोच रखनी होगी। और सभी तरह से सोचने के बाद अपने लोगों से इस बारे में चर्चा भी जरूरी तौर पर करनी चाहिए, इससे उसके अच्छे या बुरे के बारे में किसी नतीजे तक पहुंचा जा सकता है। वेल, ये तमाम बातें लगने में तो बहुत ही बेसिक सी लगती हैं, पर जब इन्हें किसी पेप्सिको जैसी बड़ी कंपनी में इंप्लीमेंट करने की बात होती है ना, तो अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं। पर इंदिरा नुई जी के मामले में ऐसा होना शायद नामुमकिन रहा, इसीलिए तो वो हमारी आज की लिविंग लेजेंड हैं। और हम उनके बारे में, उनके अचीवमेंट्स, उनकी सक्सेस के बारे में, उनके आइडियाज के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं उनके काम करने के तौर तरीकों से, है ना। तो खैर, यहाँ एक और म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, फिर मिलेंगे, मुलाकात यहीं होगी। यह रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, मैं हूँ समर, रेडियो मस्ती पर।

थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

0: कहानियाँ उनकी जिनके होने से हम हैं। सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: अभी का इंतजार कर रहा था, स्वागत है आपका, आइए रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। लेजेंड्स के अचीवर सीरीज में आज बात हो रही है इंदिरा नोई जी की। पेप्सिको को सालों तक लीड करते हुए इंदिरा नोई जी की जिंदगी और करियर बुलंदियों तक जा पहुंचा था। हालांकि हमने ये भी जाना कि उनका यहां तक का सफर आसान नहीं रहा, बल्कि ये कई तरह के हर्डल्स, कई तरह के चैलेंजेस का सामना करती रहीं और उन्हें, जैसे कि मैंने कहा ना कि कैसे मुश्किलों को आसान बनाना है, वो अपना फंडा लगाती रहीं और मुश्किलों को आसान करके आगे बढ़ती रहीं। सारी हर्डल्स को उन्होंने पार कर लिया। घर परिवार को संभालने के साथ ही उन्होंने जिस लेवल तक जाते हुए कॉर्पोरेट सेक्टर में अपनी सर्विस अदा की है, वो साहब कमाल है और वाकई काबिले तारीफ है, वो कभी भुलाई नहीं जा सकती। तो सलाम है ऐसी सक्सेसफुल लेडी को। बहरहाल क्योंकि इंदिरा जी ने इस सेक्टर में एक वुमन होते हुए काबिले गौर काम किया, तो लिहाजा वो सम्मान की भी हकदार रही। इसीलिए कह सकते हैं कि उनकी लाइफ का एक पार्ट उपलब्धियों भरा रहा। जी हाँ, अचीवमेंट्स ही अचीवमेंट्स की हैं, वो हकदार और रही और मिलता रहा उन्हें। एक वक्त आया जब वो सुपर पावर अमेरिका जैसी कंट्री की सेकेंड बिगेस्ट कंपनी की लेडी चीफ रही। जी हाँ, तब IBM की गिनी रोमेटी के बाद पेप्सिको की CEO रहते हुए इंदिरा नोई दूसरे नंबर पर रही। उन्हें फोर्ब्स मैगजीन की टॉप 30 पावरफुल वुमेन की लिस्ट में भी शामिल किया गया। 2009 के फोर्ब्स सर्वे में इंदिरा नोई को दुनिया में तीसरी सबसे ताकतवर महिला का नाम दिया गया। इस बीच इंडियन गवर्नमेंट भी समय समय पर उन्हें फेलिसिटेट करती रही। इनफैक्ट उन्हें इंडिया में बिजनेस एंड कॉर्पोरेट सेक्टर में बेहतरीन योगदान के लिए पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा गया। वहीं वो अमेरिका में भी आर्ट एंड साइंस के लिए अमेरिकन एकेडमिक फेलोशिप के लिए चुनी गई। और मतलब इतने सारे अवार्ड्स की फेहरिस्त है उनके नाम पर, बहुत ही लंबी है। इसलिए यहाँ बात को यहीं रोक देते हैं, एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, लौट कर आएंगे तो जारी रखेंगे इंदिरा नोई के बारे में ये दिलचस्प बातें। आप सुनते रहेगा रेडियो 24/7 लाइव पर समर के साथ इंदिरा नोई की कहानी, ऑफ कोर्स मेरी जुबानी।

0: Thursday evenings, 5 PM onwards. Catch the OG Rockstar Renuka with the week's top chart busters. Josh mein raho.
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
2: पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगा, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। कुछ देर रुकने के बाद फिर से चल पड़ना दोस्त, हर ठोकर के बाद संभलने में वक्त लगता है। जो तूने कहा कर दिखाएगा रख यकीन, जो तूने कहा कर दिखाएगा रख यकीन, गरजे जब बादल तो बरसने में वक्त लगता है। वेलकम बैक, मैं हूं समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। वाजिब बात है, हर किसी को जल्दी है कि बस वो चुटकी बजाते ही सक्सेसफुल हो जाए, है ना। पर ऐसा नहीं है। हमारे जो लेजेंड्स हैं, जिनकी जिंदगी की किताबें हम खोलकर आप तक पहुंचाते हैं, उन्होंने सिर्फ सोच ही बड़ी नहीं रखी है, बल्कि उस तक पहुंचने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत भी की है। और देखिए नतीजे आपके सामने। हमारी आज की लेजेंड जो है इंदिरा नुई जी, उनका भी कुछ ऐसा ही मानना रहा है। मेहनत की और सब्र रखा और सक्सेसफुल लेडी बनकर उभरी। तभी तो कहते हैं कि ऐसे लेजेंड से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फर्श से अर्श तक पहुंचे लोग हम सभी को मोटिवेट करते हैं, है ना। बहरहाल इंदिरा नुई जी के कॉर्पोरेट चेहरे की तो हमने बात की, एक दूसरा पहलू भी तो है उनकी पर्सनल लाइफ का। वो ये है कि उनके जो हस्बैंड हैं राजू के नुई, वो भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। दो बेटियां हैं उनकी, तारा और प्रीता नुई। दोनों बेटियां भी अपने पेरेंट्स के नक्शे कदम पर आगे बढ़ रही हैं। और जहां तक बात है इंदिरा नुई जी के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का, तो वो तो एक टाइम था जब गर्ल्स के एक रॉक बैंड का हिस्सा हुआ करती थी, वो गिटार प्ले करती थी वो वहां पर। और हाँ, क्रिकेट खेलने का भी बड़ा शौक रहा उन्हें। तो ये उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातें हैं। अभी एक और म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, इसके बाद होगी आज की आखिरी मुलाकात। सुनने जरूर आइएगा।

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ.
2: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ.
3: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां.
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग. द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: वेलकम बैक, मैं हूँ समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। किसी ने कितना सही कहा है कि हम क्या नहीं कर सकते, इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो नामुमकिन हो। हम वो सब कर सकते हैं जो सोच सकते हैं, और ये भी कहते हैं कि हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने सोचा नहीं है। जहाँ इसी ताने वाने के साथ बड़ी हमारी आज की लेजेंड इंदिरा नूई की जिंदगी, जिन्होंने हमेशा ही अपनी सोच तो बड़ी रखी, जो भी टारगेट या कहें गोल उन्हें सेट करके दिए गए या उन्होंने सेट किए, उन तक बिना किसी शॉर्टकट के आगे बढ़ती रही स्टेप बाय स्टेप। और आखिर वो वक्त आ ही गया जब हर टारगेट उन्होंने अचीव किए। आज वो दूसरों के लिए ट्रेंड सेटर हैं, हम सभी के लिए लिविंग लेजेंड हैं। तो चलिए आज के इसी आखिरी पैगाम के साथ कि रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में ये कौन नहीं जानता, रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में ये कौन नहीं जानता, फिर भी वो मंजिल पा लेता है जो कभी हार नहीं मानता, फिर भी वो मंजिल पा लेता है जो कभी हार नहीं मानता। तो जी हाँ, बाधाएं आती रहेंगी सफलता के बीच में, पर हार कर बैठना नहीं है, उसे चैलेंज करना है, उसे एक्सेप्ट करना है, उस चैलेंज को और आगे बढ़ना है, उन हर्डल्स को, उन मुश्किलों को आसान बनाना है पॉजिटिव सोच के साथ। और देखिए कैसे आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो फिर इसी प्रॉमिस के साथ कि लेजेंड्स के अचीवर सीरीज में समर मिलवाएगा ऐसी ही एक और शख्सियत से जिनसे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। अभी के लिए मैं साइन ऑफ करता हूँ, लेकिन जाते जाते कुछ वादे करते जाइए। कहिए कि आप रखेंगे अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल। किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाएंगे, किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर सज जाएंगे, और कुछ ऐसा कर जाएंगे कि लोग आपको याद रखें। याद मुझे भी रखिएगा अपनी दुआ में। मेरा नाम है समर, आपसे मिलूंगा यहीं पर, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर।

0: जादू है नशा है
1: और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना
2: रात।

0: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
1: हाँ, मैं एक लड़की, बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
0: उसे बताया क्यों नहीं?
1: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है, बहुत चाहती है।

0: रात भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है।
1: What is your behavior of choice this evening? Do I sound a little cheesy?

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

0: जाने रे, ये शेर तुझे खा जाएगा, हो जाएगी खत्म कहानी रे।
1: ये आदमी का बच्चा शिकार खेलने आया है, बंदूक चलाने आया है, मार मार के जंगल से निकाल दूंगा, भाग इधर से चल।

0: परेशान।
1: वो तैयब टेल मी हाउ, तैयब टेल मी हाउ हाउ। ओ लड़की तेरी ताजमहल सी हम करे वाओ वाओ।

0: रात भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है। जोश में रहो।
1: मोहब्बत क्या है?
2: मोहब्बत, मोहब्बत जिंदगी है।
3: मोहब्बत क्या है, क्यों है, कहाँ है?
2: मेरा विश्वास है कि भगवान ने सारे दिल के रिश्ते पहले से ही जोड़ दिए हैं, बस उनका मिलना हम पे छोड़ दिया है। उसने हम सबको जोड़ियों में बनाया है और हर एक के लिए कोई एक जीवन साथी है।
3: जीवन साथी, क्या बकवास है, मैं इन सब बातों को नहीं मानता।
2: मुझे तो पूरा भरोसा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरे लिए बनाया गया है, और कभी ना कभी मैं उससे जरूर मिलूंगी।
3: अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन मुझे कोई बताएगा प्लीज कि मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरे लिए कौन बनाया गया? मेरा मतलब क्या वो मेरे नाम का बोर्ड लेकर घूम रही होगी?

दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो, तो जिंदा हो तुम। नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो, तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखिए निगाह। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो, तो जिंदा हो तुम। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल।

जो करता है पाता है। अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा।

0: Agora, velho.
1: जागो जागो जागो, सुबह हो गई, जल्दी से ले लो चाय, ठंडी हो गई।

0: जाग जा।
1: चल फोट भाग जा, मेरे पीछे क्यों पड़ा है, वो भी तो सोया पड़ा है।
0: ए, ए विलन बादशाह, ये क्या करता है?
1: अरे का, सरत करता है, देखता नहीं क्या तू?

0: था मुझे, सारा दिन झगड़ा ही कर रहे क्या है?
1: अरे साला, अभी तक लड़े हुए तुम लोग?
2: अरे छोटू, अरे तेरी तो
1: ए, ए, अब उनको हाथ नहीं लगाना।

कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होता, जब कर लो बस तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है। अदिति मेरे शेर मेरे चीते, तुझे कुछ साल अकेला क्या छोड़ा, तूने इतना बड़ा झोल कर दिया। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते।

आज इस मुबारक मौके पर मैं आप लोगों को मेरी और कामिनी की दास्तान सुनाना चाहता हूँ, मोहब्बत की दास्तान।

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

0: शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Fan.
1: हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वाह वाह, बिल्कुल जी, आ गए हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जी हाँ, वेलकम करते हुए यहाँ पर 7 बजकर हो चुके हैं 7 मिनट। मैं अंतरा आपके साथ। एंड सच बताऊँ, ऐसा लग रहा है कि मैं घर गई ही नहीं हूँ कल सुबह से लेकर शाम तक, एंड उसके बाद शाम से लेकर आज सुबह तक, एंड आज सुबह से लेकर अगेन फिर आज शाम तक। आई मीन यू नो दोज डेज व्हेन टाइम जस्ट डिसाइड्स टू काइंड ऑफ स्प्रिंट अहेड and you are just trying to keep up. That's exactly how I feel this morning. But iska ek aur matlab bhi hai, if I'm spending all this time with you, to obviously I have been collecting every little update, every interesting story, har fun conversation jo hai, matlab khod khod ke jisko kehte hai na, khabre jo hai main lekar yahan par aapke paas pahunch rahi hu. So well, of course you cannot miss this. Good morning Sapnaji, good morning my dear Salma, and good morning to all those people who are writing to me, जिनको मैं अभी रिस्पॉन्ड करूंगी आफ्टर राय से, गुड मॉर्निंग ओवर हियर। वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि मंडे जो हुआ, जैसा हुआ, मीटिंग्स हुई, डेडलाइंस हुई, ट्रैफिक हुआ, मूड स्विंग्स बहुत सारे हुए, हो गया ना, इट्स बिहाइंड अस नाउ। वी डोंट गेट बोनस पॉइंट्स फॉर रीप्लेइंग मंडे इन आवर हेड्स, दैट इज फॉर श्योर। सो टुडे लेट्स हिट दैट टाइनी मेंटल रीसेट का बटन। आज का फोकस सिंपल है, व्हाट्स इन फ्रंट ऑफ अस। अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अच्छे अच्छे गाने सुनेंगे, इंटरेस्टिंग खबरें सुनेंगे, सम स्माइल्स, मे बी अ फ्यू अरे वाह ये तो पता ही नहीं था वैसे वाले मोमेंट्स भी होने चाहिए ना, एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ मस्ती, बिकॉज एवरी मॉर्निंग डजंट हैव टू बी परफेक्ट, इट जस्ट हैज टू बी अ लिटिल बेटर देन द लास्ट वन। और कभी कभी बस एक सिंपल सा एक अच्छा गाना सुन लिया, कभी किसी को कुछ बोल दिया तो उसने स्माइल कर दिया, एक पॉजिटिव थॉट, आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ टू मेक अ डे का डायरेक्शन यू नो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। सो ग्रैब दैट चाय, बिकॉज मेरी चाय यहाँ पे एकदम सॉलिड रेडी है। मेरे साथ तो वैसा हो जाता है कि आज की सुबह ऐसा है, जब पहला घूट मेरा अंदर गया, मेरी अंतरा आत्मा जो जागी है कि नहीं बेटा, करना तो है ही, आना तो है ही, ये तो होगा ही होगा। Well, let's begin. एक अच्छा सा खूबसूरत सा जो है एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, let me come back on, शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला on Radio Masti 24/7 Live। Good morning, good morning।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning.
5: सुबह की डोज ऑफ फन एंड फैक्ट्स, मस्ती का मंत्र विद आरजे अंतरा।
6: There is no better therapy than a good 90s वाला गाना जो सुबह सुबह जो है आपका दिन बना दे। What a beautiful track! फिर तेरी कहानी याद आई, तेरी दर पर सनम चले आए। Can you imagine Anu Malik who wrote ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है? The same guy also did तेरी दर पर सनम चले आए। It's insane. I know it's not Thursday. It's just the song which does its magic and then you kind of stay there for quite some time. 7 बजकर हो चुके हैं 21 मिनट। Good morning radio. मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्राइब के साथ यहाँ पर मस्ती का मंत्र चल रहा है। एक्चुअली द थिंग इज दैट व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट, आजकल मेरे आसपास बहुत सारे लोग ये चीज कह रहे हैं और कर भी रहे हैं। आई मेट अ फ्रेंड अ फ्यू डेज अगो एंड शी इज वेरी वेल सेटल्ड, शी अर्न्स वेरी वेल, बट सडनली अभी यू नो शी हैज स्टार्टेड क्वेश्चनिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड शी इज लाइक कि यू नो क्या फायदा है इन सब का, मेरे को जो है आई जस्ट वॉन्ट टू यू नो कहीं पे कैफे खोलकर I just want to relax. Ho gaya, kitna bhag daur karungi and all of those things. And you always come to that point in your life when you actually start questioning all these things that why and kab tak chalega ye sara ka sara madness. Waisa hi similar. So kabhi kabhi hum kisi ko dekhte hain aur sochte hain yaar iske paas to sab kuch hai, right? Badhiya career hai, achhi salary hai, success hai, recognition hai, life sorted hai yaar. Lekin sach ye hai ki success aur happiness hamesha same address par bilkul nahi rehte dost. So yahi ek aur article यही सब पढ़ते पढ़ते सामने आया। एक टेक एंटरप्रेन्योर अदिति सिन्हा इनका नाम है, शी वॉक्ड अवे फ्रॉम दिस स्टार्टअप जर्नी जहां पे इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए, ओके, इवन रिटर्न्ड अराउंड $2 million का जो है अमाउंट टू द इन्वेस्टर्स। Why? Because she realized that she had built a successful company, yes, but somewhere along the way she had stopped building the life she actually wanted. She says burnout made her rethink success and today she is writing, she is going performing music and poetry and, you know, working on creative projects instead. Now, of course, there is this that side of yours ki bas aaj to main bhi apna resignation dal ke nikal jaate hain, but that's not the takeaway. Har kisi ki story aur har kisi ki kahani alag hoti hai, sabke responsibilities alag hote hain, lekin what is common is that if you are constantly running, it's worth asking yourself, right, what exactly are you running towards? Kabhi kabhi we become so busy chasing the next target, right, that we forget to check ki if we are still enjoying hamara jo ye life ka journey, hum usko jee bhi rahe ki nahi. So well, yeah, that is that, and that actually made me think while other friends around me went like, अरे तू पागल हो गई है क्या, ऐसा मत सोच, वो होता है, थोड़ा सा ऐसा एक slump period आता है, and I was quiet sitting over there listening, wanted to listen to her more and more, and I was very curious that what, like, wow, it really takes a lot to do or think or take a call like this. ऐसा मुझे लगता है। What do you think? Do let me know. Good morning.

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: It's 7:36 by the studio clock radio Musti 24/7 live पर वक्त हो चला है कि आपको बताया जाए कि क्या है सिंगापुर के सड़कों का हाल चाल। सुबह सुबह जो है एक एक्सीडेंट की यहाँ पे खबर आई है ऑन कॉर्पोरेशन रोड टूवर्ड्स AYE आफ्टर बूनली वे, अवॉइड करें लेन नंबर 2। हैवी ट्रैफिक की खबर है ऑन PIE टूवर्ड्स चांगी एट बुकेट पैथॉक रोड एग्जिट। और एक और एक्सीडेंट की खबर है ऑन AYE टूवर्ड्स MCE आफ्टर क्लेमेंटी एवेन्यू 6, इसका कंजेशन बढ़ेगा टिल जरोंग टाउन हॉल रोड, अवॉइड करें लेन नंबर 2। सो वेल प्लीज बहुत ध्यान से गाड़ी चलाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं अगर आप फोर व्हीलर पे बैठे हैं, आगे बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, कैब में बैठे हैं, मेक श्योर दैट योर सीट बेल्ट इज ऑलवेज ऑलवेज ऑन। अगर आप टू व्हीलर है, हेलमेट ऑलवेज ऑन। और अगर आप पैदल जा रहे हैं तो मेक श्योर दैट आपका एक कान ऑलवेज ऑलवेज फ्री हो, जस्ट टू नो दैट व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड यू, विच I have learned from my personal experience. पहले मेरे दोनों कानों पे हमेशा हेडफोन्स लगे हुए रहते थे, नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स, या बट देन दैट इज नॉट ओके। यू ऑलवेज हैव टू बी अवेयर व्हेन वी आर ऑन रोड, राइट? सो ये सारी बातें तो हमें पता ही पता है, बट ये भी पता है कि अगला आने वाला गाना जो है इट इज जस्ट गोना मेक यू स्माइल फ्रॉम द साउंडट्रैक ऑफ थ्री इडियट्स सोनू निगम श्रेया घोषाल, लेट्स डू सम ज़ूबी डूबी।
3: यू आर ट्यून्ड इनटू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: Your weekly mood lift mantra, only with RJ Antra.
1: Beautiful numbers being played this morning on Radio Masti 24/7 Live. Masti ka mantra chal raha hai Antara ke saath. 7:43 ho chuke hai studio clock mein. Good morning, good morning. Main kehti hu ki ek banda, ek aisa cricketer jiske liye background score dhoondne ki zarurat hi nahi hai, kyunki uske cricket ke maidan mein utarne se pehle hi uska background score already aa rakha tha. I am talking about Suryavanshi. Pura yaad hai. So Suryavanshi is one of the Akshay Kumar movie and he had this entry title background score which is absolutely amazing. Every single time ये हमारा 15 साल का लड़का उतरता है मैदाने खेल में, पीछे मुझे ऐसा लगता है यही टाइटल ट्रैक जो है बिल्कुल बजने लगता है. Yes, I am talking about 15-year-old Vaibhav Suryavanshi who has created history and कोई बड़ी बात नहीं है. जब जब जब हम इस लड़के की बात करते हैं कुछ ऐसी ही बात निकल के आती है. So playing against Zimbabwe, he recently smashed his first international T20 50 in just 18 balls, becoming the youngest player ever to score an international half century, breaking record that was held by the master blaster Sachin Tendulkar himself. Imagine that. 15 साल की उम्र में जब हम लोग क्या कर रहे थे, होमवर्क से जूझ रहे होंगे, समर हॉलीडेज के बीच में यू नो ऐसे सोच रहे होंगे कि क्या करें, कॉमिक्स पढ़ लिया जाए, कि आज वीडियो गेम खेलने के परमिशन मिलेगा. ये बंदा इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है. मैच के बाद जब मीडिया से जो है वह सूर्यवंशी ने बात की, उन्होंने एक बहुत सिंपल सी बात बोली. ही सेड दैट इट जस्ट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस. And that's all he said. He said scoring early in your international career gives you confidence for the matches coming ahead. Well, it is coming from a point of a lot of honesty because every player remembers apna very first big knock. Har kisi ko apna first bahut yaad rehta hai ki aapki first salary kitni thi, apne you know aapki first naukri kya thi, and we always talk and you know cherish those moments. So वैसे भी cricket में इतना ज़्यादा pressure होता है, right? एक मैच में लोग बोलते हैं कि भाई तुम फ्यूचर स्टार हो, दूसरे मैच में वही लोग बोलते हैं कि फॉर्म कहाँ है, सर पे चढ़ गया है. सोशल मीडिया हैज मेड एवरीवन्स करियर एनालिसिस अवेलेबल विद इन सेकंड्स एंड यू विल अग्री विद मी ऑन दैट. सो थैंकफुली वेब ऑफ सूर्यवंशी सीम्स टू बी कीपिंग हिज फीट ऑन द ग्राउंड एंड फोकस एंड नॉट लिसन टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ही हैज ऑल्सो सेड ही इज नॉट गेटिंग कैरीड अवे एंड वॉन्ट्स टू कीप वर्किंग हार्ड. वैसे यू नो आई थिंक सचिन के बाद ही इज वन ऑफ द वेरी यंग प्रोमिसिंग इंडियन क्रिकेटर्स जिसको यू नो देखकर अब भी लगता है कि यार बहुत आगे जाएगा. युवराज सिंह भी वॉज वन ऑफ देम, विराट कोहली, शुभमन गिल एंड नाउ आई थिंक वैभव सूर्यवंशी. Who do you think? Who is your favorite one out of all? Right? Please do let me know. 9518963. पर ये भी और भी अगर कुछ बात करनी हो तो बिंदास आप बोल सकते हैं. फिलहाल के लिए, let's get into another good musical break. Good morning.

0: लड़की का मंत्रा विद आरजे अंतरा।
1: भाई ये घंटा तो होने वाला है खत्म, एंड अगले घंटे में जब मिलेंगे देयर इज अ लॉट व्हिच ऑफ कोर्स व्हिच रिमेंस व्हिच आई हैव टू टेल यू फ्रॉम सिंगापुर की खबर, जहां पर हॉस्पिटल्स यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इज गोइंग टू स्टार्ट अ पायलट प्रोग्राम एंड यू मस्ट नो अबाउट इट। टू इंडिया जाएंगे और वहां पर क्या एक बड़ा चेंज, वहां पर भी एक पायलट प्रोग्राम शुरू होने वाला है, बट दैट विल यू नो मेक यू फील वेरी डिफरेंट, एक्चुअली लिटरली फील वेरी डिफरेंट अबाउट द नोट्स। जहां पे आ जाए पैसे और हॉस्पिटल्स की बात, यू शुड नॉट मिस द अगले घंटे की खबर्स ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, सो स्टे ट्यून्ड। गुड मॉर्निंग।

एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में। वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।